जहाँ कुछ लोग राहों में मिलते हैं और कुछ याद बनकर साथ चल पड़ते हैं, और ऐसे में कई बार वो हमारे साथी भी बन जाते हैं और कई बार दर्द भी दे जाते हैं। और ऐसे समय में गीत हमारे साथी होते हैं जो हमारे सफ़र को खूबसूरत भी बनाते हैं और तसल्ली भी देते हैं। चलिए इसी श्रृंखला में आपको सुनवाते हैं अगला गीत।

जी हाँ दोस्तों, अब हम अपने अंजाम की तरफ आ चुके हैं। प्रोग्राम भोर सुहानी आप सुन रहे हैं और अब चलते चलते खूबसूरत से गीत के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। उम्मीद है कि आज के गीत आपके दिल को सुकून और चेहरे को मुस्कुराहट दे गए होंगे। तो अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि संगीत ही वो एहसास है जो दिलों को हमेशा करीब रखता है। तो चलिए सुनते हैं चलते चलते ये गीत और सुरभि को दीजिए इजाज़त।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों पक्षों के बीच ऊर्जा सुरक्षा, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होने की उम्मीद है।
1: इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन एलएनजी की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स देशों के

विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुखों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। इससे पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्ती में कई एयरोस्पेस और रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास

0: शाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें नीट परीक्षा को सुचारू और प्रभावी ढंग से संचालित करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अनिल धीरूभाई अंबानी एनडीए समूह की कंपनियों में से एक रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के विरुद्ध दर्ज मामले में मुंबई, गुरुग्राम और बेंगलुरु स्थित 7 परिसरों पर तलाशी ली है। ये तलाशी कंपनी के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी और निदेशकों के आवासों पर की गई, जो वर्ष 2015 से 2017 के दौरान कंपनी में कार्यरत थे। सरकार ने अग्रिम प्राधिकरण योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। ये योजना आभूषण निर्यातकों को शून्य शुल्क पर कच्चे माल का आयात करने की अनुमति देता है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने कहा है कि इस योजना के अंतर्गत निर्यातक एक बार में अधिकतम 100 किलोग्राम सोना ही बिना किसी शुल्क के मंगा सकते हैं। महानिदेशालय ने पहली बार आवेदन करने वालों के लिए विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है, ताकि उनकी परिचालन स्थिति और क्षमता का पता लगाया जा सके। दोबारा बिना शुल्क सोने के आयात के लिए कंपनी को अपने पिछले टारगेट का कम से कम 50% निर्यात पूरा करना होगा। इससे पहले इस योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर कोई सीमा नहीं थी। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 111 लोगों की मौत और 200 लोगों के घायल होने की खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला अधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल का तत्काल जायजा लेने का निर्देश दिया है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। कल शाम धर्मशाला में मुंबई इंडियंस ने एक गेंद शेष रहते 205 रन बनाकर जीत हासिल की। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल किया। प्रतियोगिता में अजीत, कोमल कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सरबजीत कौर। Prime Minister Narendra Modi will embark on a six-day visit to UAE, Netherlands, Sweden, Norway and Italy today. On the first leg of his five-nation visit, Mr. Modi will reach UAE today, where he will meet President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. The two leaders will exchange views on bilateral issues, in particular energy cooperation, as well as regional and international issues of mutual interest. They will also discuss ways to advance the bilateral comprehensive strategic partnership, underpinned by strong political, cultural, economic and people-to-people links. Energy security is expected to remain a central theme of the engagement. Briefing media prior to the visit, Additional Secretary West in the Ministry of External Affairs, Asim Mahajan, said energy remains a key pillar of the relationship. He noted that the UAE was India's fourth largest source of crude oil last year, meeting around 11% of India's requirement. Prime Minister Narendra Modi has said that under India's chairmanship this year, BRICS will work together to strengthen multilateralism, promote sustainable development, enhance economic resilience, and build a more inclusive world order. Interacting with foreign ministers and heads of delegation of BRICS countries who called on Mr. Modi in New Delhi, the Prime Minister said BRICS has emerged as an important platform for advancing cooperation among emerging economies and giving voice to the aspirations of the Global South. The meetings took place on the sidelines of the BRICS foreign ministers' meeting, which is underway in New Delhi. The government has imposed a limit of 100 kg on gold imports under the Advance Authorization Scheme, which allows jewellery exporters to import raw or input materials at zero duty. In a public notice, the Directorate General of Foreign Trade said, advance authorization for import of gold shall be issued subject to a maximal remissible quantity of 100 kilograms. The Directorate General added that any subsequent advance authorization for the import of gold shall be considered for issuance only upon fulfillment of at least 50% of the export obligation earlier.

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है।
0: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।

सब में एक चिंगारी है जिसे कोई बुझा नहीं सकता। जो बुराई पास आएगी जल जाएगी, जो पाप करीब आएगा जल जाएगा। तुम सब शोले हो, मशाले हो, जल

इतिहास को बदला पहिए ने, पहिया घूमता है, दुनिया आगे बढ़ती है। तुम्हें भी एक दिन इतिहास बदलना है, देश को आगे बढ़ाना है। तुम सब आने वाले कल की सांसें हो, तुम सब आने वाले कल की धड़कन हो।

नमस्ते, हेलो, आदाब। हाँ जी, अब तक हमने इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज के बारे में बहुत कुछ सुना है। आप जाएंगे नेशनल चॉकलेट चिप डे के बारे में। हाँ, आज 15 मई में नेशनल चॉकलेट चिप डे भी मनाया जाता है। हर दिन अपने साथ कुछ खास लेकर आते हैं, कुछ दिन हमें सोचने पर मजबूर करते हैं और कुछ दिन इतिहास से जुड़ता है और कुछ दिन हमें छोटी छोटी खुशियों का एहसास दिलाता है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ही मीठे और डिलाइटफुल सेलिब्रेशन की, नेशनल चॉकलेट चिप डे के बारे में। जी हाँ, जो छोटे छोटे चॉकलेट्स के पीसेस जो कुकीज़, केक्स, मफिन्स और डेसर्ट्स को और भी ज़्यादा टेस्टी बना देता है, उन्हीं चॉकलेट चिप्स को डेडिकेट किया गया है ये खास दिन। तो अगले कुछ समय तक हम बात करेंगे चॉकलेट चिप्स की इंटरेस्टिंग कहानी, उनकी हिस्ट्री, फन फैक्ट्स, रेसिपीज, हेल्थ अवेयरनेस और कैसे एक छोटी सी स्वीट चीज़ हमारे मूड को इंस्टेंटली बेटर बना देती है। तो बनी रहिएगा हमारे साथ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हैदराबाद 101.9 FM रेनबो विद मी आरजे वैष्णवी। और अब एक इट्स ब्यूटीफुल सॉन्ग आ रहा है, दिल दिया गल्ला। स्टे ट्यून्ड।

0: में हमारी विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी, जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते एनटीए ने तुरंत एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाएं, 2 से शुरू होगा 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। एडमिट कार्ड, इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुँच जाएगा।
1: श्री प्रधान ने कहा कि वर्तमान में ओएमआर मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी माध्यम से होगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि एनटीए में ठोस सुधारों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भविष्य में किसी भी तरह की अनियमितताओं को रोकने के लिए परीक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने संबंधी उपाय किए जाएंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में एनटीए ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से केवल एनटीए के आधिकारिक चैनलों पर ही भरोसा करने का अनुरोध किया है। इससे पहले इस महीने की 3 तारीख को भी परीक्षा कथित पेपर लीक के कारण रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। प्रधानमंत्री आज सुबह संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, साथ ही पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। विदेश मंत्रालय के अपर सचिव पश्चिम असीम महाजन ने कहा कि ऊर्जा दोनों देशों के संबंधों का एक प्रमुख स्तंभ है। एक रिपोर्ट।
2: इंडिया और यूए की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन एलएनजी की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
1: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने बताया कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति और उसके प्रभावों पर चर्चा की। उन्होंने आपसी हित के द्विपक्षीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। डॉ जयशंकर ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में श्री अराक्ची की भागीदारी की सराहना भी की। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज सीएनजी गैस की कीमतों में 2 रुपये की वृद्धि की है। इसके साथ ही दिल्ली में 1 किलोग्राम सीएनजी की कीमत 79.09 रुपये, गाजियाबाद और नोएडा में 87.70 रुपये और गुरुग्राम में इसकी दर 84.12 रुपये हो गई है। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सरकार ने अब अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। पहले इस योजना के तहत सोने के आयात की कोई सीमा नहीं थी। दिल्ली मेट्रो रेल निगम डीएमआरसी ने आज पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से राजधानी में ईंधन की खपत कम करने और सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन संचालित शटल बस सेवा शुरू की। ये केंद्रीय सचिवालय और सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशनों तथा सेंट्रल विस्तार क्षेत्र के प्रमुख सरकारी प्रतिष्ठानों के बीच निर्बाध और पर्यावरण अनुकूल अंतिम मील कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज शुरुआती कारोबार में मामूली बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 82 अंक बढ़कर 75,481 पर, जबकि निफ्टी 29 अंक की वृद्धि के साथ 23,719 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi has embarked on a 6-day visit to the UAE, the Netherlands, Sweden, Norway and Italy this morning. On the first leg of his 5-nation visit, Mr. Modi will reach UAE today, where he will meet President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. The two leaders will exchange views on bilateral issues, in particular energy cooperation, as well as regional and international issues of mutual interest. The National Testing

0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता हैं और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है।
1: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, ओएमआर शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उस

होता है चॉकलेट को एंजॉय करने के लिए, लेकिन लाइफस्टाइल हेल्थी लाइफस्टाइल के साथ करिएगा। और फन चॉकलेट फैक्ट्स के बता दूं, अब वक्त है कि कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स का। फैक्ट नंबर वन, चॉकलेट चिप कुकीज़ दुनिया की मोस्ट लव्ड कुकीज़ में से एक मानी जाती हैं। फैक्ट नंबर टू, चॉकलेट चिप्स सिर्फ डार्क या मिल्क चॉकलेट में नहीं, वाइट चॉकलेट, कैरमल और फ्लेवर्ड वर्शंस में भी मिलते हैं। आप सभी को ये पता ही होगा। फैक्ट नंबर थ्री, आजकल हेल्थी ऑल्टरनेटिव्स भी अवेलेबल हैं, जैसे लो शुगर या डार्क चॉकलेट चिप्स या डाइट चॉकलेट्स भी मिलते हैं। फैक्ट नंबर फोर, कई लोग चॉकलेट चिप्स को ब्रेकफास्ट पैनकेक्स और ओट्स में भी यूज़ करते हैं, और शायद हम में से कई लोग सीक्रेटली डायरेक्टली पैकेट से चॉकलेट चिप्स खा भी लेते हैं। छोटा सा स्वीट टेम्पटेशन है कि ना, मैसेज करके बताइएगा। हम वेट कर रहे हैं और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हैदराबाद 101.9 FM रेनबो विद मी आरजे वैष्णवी।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

आरजे वैष्णवी, आपने बहुत बहुत बहुत सारी बातें शेयर करी हैं मुझसे. जी मैम, बहुत पसंद है चॉकलेट बोल के. हाँ जी, मैं भी बहुत खुश हो गई आपको बहुत पसंद है बोल के. अभी हम चॉकलेट्स अराउंड द वर्ल्ड के बारे में बात करेंगे. तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि चॉकलेट्स हर कंट्री में अलग स्टाइल में एंजॉय की जाती हैं. कहीं चॉकलेट चिप मफिन्स फेमस है, तो कहीं जाइंट कुकीज़ फेमस है, कहीं डेजर्ट्स और कहीं मिल्क शेक्स. लेकिन एक बात कॉमन है, चॉकलेट ऑलमोस्ट हर एज ग्रुप को पसंद आती है, चिल्ड्रन हो या एडल्ट. चॉकलेट का नाम सुनते ही स्माइल आ जाती है ना? हाँ जी, मुझे भी आती है. चॉकलेट चॉकलेट चॉकलेट, हर जगह चॉकलेट का हवा मचा हुआ है. अभी स्वीट मैसेज बात करेंगे. डियर लिसनर्स, जिंदगी भी कुछ हार्ड तक चॉकलेट चिप कुकी की तरह होती है. कभी सिंपल, कभी अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस से भरी हुई है. और छोटी छोटी स्वीट स्वीट स्वीट मेमोरीज की यूज़ मेमोरेबल बन जाती हैं. नेशनल चॉकलेट चिप डे हमें रिमाइंड करता है कि लाइफ की लिटिल जॉयस को अप्रिशिएट करना भी बहुत ज़रूरी है. कभी फैमिली के साथ चाय और कुकीज़, कभी एक होममेड डेजर्ट, कभी किसी को एक स्वीट सरप्राइज देना, यही छोटी खुशियाँ बड़े मोमेंट्स बन जाती हैं. आज अगर मौका मिले तो एक स्मॉल चॉकलेट ट्रीट के साथ अपने लव्ड वंस के साथ कुछ क्वालिटी टाइम ज़रूर बिताइएगा, क्योंकि स्वीटनेस सिर्फ चॉकलेट्स में नहीं, रिलेशनशिप्स में भी होनी चाहिए. हाँ जी, और ज़रूर बताइएगा कि मुझसे किससे आपने उस चॉकलेट को शेयर किया है. और हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस आए हैं. अभी आज जी वैष्णवी को नमस्कार बोलते हैं. माय नेम इज़ अशोक सुतान शाही. नमस्कार अशोक जी, नमस्कार. मैं बहुत खुश हूँ आपके साथ बात करते हुए. उन्होंने बहुत बहुत सारी बढ़िया बढ़िया बातें शेयर की हैं मेरे साथ. मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी थोड़े वक्त के बाद. और वी आर हैविंग, हेलो वैष्णवी जी, आई एम शिवा फ्रॉम गटकेजर हैदराबाद. मुझे बचपन से बन और पफ्स खाना बहुत पसंद है और आज भी वो मेरा फेवरेट है. लेकिन मॉम हमेशा बेकरी और डायरी प्रोडक्ट्स कम खाने के लिए बोलती हैं, इसीलिए कभी कभी मैं बाहर जा रहा हूँ बोलकर चुपके से पफ्स खा कर आ जाता हूँ. ये याद मेरी इंटरमीडिएट टाइम से है. सुपर फैंटास्टिक, एवरी चाइल्ड डज दैट कि मम्मी मना कर देती हैं पर हमारे को वो बहुत बहुत पसंद होती हैं. हाँ, तब क्या करेंगे, बाहर जाके ही खाएंगे ना. या आप भी बहुत सारे ऐसी ऐसी मीठी मीठी बातें मुझसे शेयर कीजिएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पर. और अभी आ रहा है अमेजिंग सा गाना. सुनते रहिए आकाशवाणी हैदराबाद 101.9 FM रेनबो विथ मी आरजे वैष्णवी.

Yes, welcome back to Akashvani Hyderabad 101.9 FM Rainbow with me RJ Vaishnavi. हमने अब तक बहुत सारी मीठी मीठी बातें वर्ल्ड नेशनल चॉकलेट चिप डे के बारे में बात किया था और आप एक फेमस पर्सनैलिटी के बारे में बात करेंगे, माधुरी दीक्षित जी के बारे में, बिकॉज आज उनका बर्थडे है. हैप्पीएस्ट बर्थडे माधुरी जी का. मैं बहुत बहुत बड़ी फ़ैन हूँ आपकी. यस, सिनेमा सिर्फ एंटरटेनमेंट का मीडियम नहीं होता है बल्कि इमोशंस, म्यूजिक, डांस और अनफॉरगेटेबल मेमोरीज का सफर भी होता है. और जब हम हिंदी सिनेमा की ग्रेसफुल, टैलेंटेड और टाइमलेस एक्ट्रेस के बारे में बात करेंगे तो एक नाम अपने आप ही दिल और जुबान पर आ जाता है, माधुरी दीक्षित. हाँ जी, आज हम मना रहे हैं उनका जन्मदिन. एक ऐसी एक्ट्रेस जिन्होंने अपनी खूबसूरत स्माइल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी डांसिंग टैलेंट और पावरफुल एक्टिंग से करोड़ों दिल पर राज किया है और राज कर रही है भी. बॉलीवुड की दग दग गर्ल के नाम से मशहूर माधुरी दीक्षित सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं बल्कि एक एरा है. हाँ जी, एक एरा. तो आइए अगले कुछ समय तक चलते हैं उनकी जिंदगी और फिल्मी सफ़र के इस खास म्यूजिकल और इमोशनल जर्नी पर. यस, स्टे ट्यून्ड टू आकाशवाणी हैदराबाद 101.9 एफएम रेनबो विद मी आरजे वैष्णवी.

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: वेलकम बैक टू आकाशवाणी हैदराबाद 101.9 एफएम रेनबो विद मी आरजे वैष्णवी, और हम बात कर रहे हैं द फेमस टैलेंटेड एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित जी। हिंदी सिनेमा में नए चेहरे आ रहे हैं। इसी दौरान माधुरी दीक्षित ने बॉलीवुड में अपना सफ़र शुरू किया था। शुरुआत इतनी आसान नहीं थी, उनकी अर्ली फिल्म्स को एक्सपेक्टेड सक्सेस नहीं मिला, लेकिन कहते हैं ना, टैलेंट और हार्डवर्क कभी वेस्ट नहीं जाती। और फिर आई वो फिल्म जिसने सब कुछ बदल दिया, तेजाब। इस फिल्म ने माधुरी दीक्षित को ओवरनाइट सेंसेशन बना दिया है, और एक गाना, एक डांस परफॉर्मेंस जैसी लोग आज भी भूल नहीं पाए हैं। 1-2-3 यस, इस गाने ने माधुरी दीक्षित जी को हर घर का फेवरेट बना दिया। उनकी एनर्जी, एक्सप्रेशंस और डांस मूव्स ने ऑडियंस का दिल जीत लिया। तेजाब के बाद माधुरी दीक्षित ने कभी पीछे मुड़कर ही नहीं देखा है, हाँ, टैलेंट की वजह से। एक एक बात, एक हिट फिल्म्स, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस और डांसिंग एक्सेलेंस ने उन्हें सुपरस्टार बना दिया। उन्हें कुछ यादगार फिल्मों में शामिल है दिल, बेटा हम आपके है कौन, ये मेरी फेवरेट मूवी है, दिल तो पागल है, देवदास, हर फिल्म में एक अलग रोल, एक अलग पर्सनालिटी और एक अलग ही कैरेक्टर में परफेक्शन। अगर बॉलीवुड डांस की बात हो रही है और माधुरी दीक्षित का जिक्र न आए, इम्पॉसिबल सी बात है। उन्हें सिर्फ एक्ट्रेस नहीं, डांस आइकॉन भी माना जाता है। चाहे क्लासिकल ग्रेस हो या एनर्जेटिक बॉलीवुड स्टाइल, उनका हर परफॉर्मेंस अनफॉर्गेटेबल होता है। कौन बोल सकता है दग दग करने लगा, चोली के पीछे क्या है, दीदी तेरा देवर दीवाना। मारदाला, एक्स्पेशली मारदाला फ्रॉम देवदास, उनको रॉयल डांस परफॉर्मेंस आज भी लेजेंडरी माना जाता है। डांस लवर्स के लिए माधुरी जी एक इंस्पिरेशन है। डियर लिसनर्स, अक्सर कहा जाता है कि माधुरी दीक्षित की स्माइल की उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। उनका स्क्रीन प्रेजेंस इतना नेचुरल था कि ऑडियंस ऑटोमेटिकली कनेक्ट फील करते हैं। ग्रेस, एलिगेंस, कॉन्फिडेंस और सिंप्लिसिटी, शायद इसी वजह से हर जनरेशन के लोग उन्हें पसंद करते हैं। और आप बताइएगा कि माधुरी दीक्षित जी का फेवरेट गाना आपका कौन सा है, और सुनते रहिएगा आकाशवाणी हैदराबाद 101.9 एफएम रेनबो विद मी आरजे वैष्णवी।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: FM Rainbow 101.9

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: अल्टीमेट गोल एग्जाम के नंबर नहीं हो सकता है, अल्टीमेट गोल संपूर्ण जीवन के विकास का होना चाहिए।
0: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
2: మీరు వింటున్నారు తాజా ట్యూన్స్ ఓన్లీ ఆన్ FM రెయిన్బో 101.9 రెయిన్బోతో మీ జీవితం రంగులమయం.

ये आकाशवाणी हैदराबाद है, आप सुन रहे हैं 101.9 FM मेगाहर्ट्ज़ पर। इस वक्त रात के 9:30 और 15 सेकेंड में हैं। अभी आप सुन रहे थे तेलुगु प्रोग्राम, अब आगाज़ होता है उर्दू प्रोग्राम नेरंग का।

0: समय आप सुन रहे हैं 101.9 FM मेगाहर्ट्ज़ पर। आज के इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और अब हम आपको सुनाते हैं एक बहुत ही मालूमाती प्रोग्राम यानी डॉक्टर माइक पर। आज का हमारा बातचीत का उन्वान रहेगा न्यूरोलॉजी और आज का इंटरव्यू है डॉक्टर रामपत प्रताप माथुर से। इंटरव्यू निगार हैं जनाब जाफर अली खान। तो आइए सुनते हैं।
1: डॉक्टर माइक पर सामईन, आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम में आज हमने दावत दी है डॉक्टर रमापत प्रताप माथुर को, जिनका नाम हमारे सामईन के लिए नया नहीं है। डॉक्टर साहब हर बार हमारी दावत पर यहाँ तशरीफ लाते हैं और उनकी माहिराना गुफ्तगू से हमारे सामईन हमेशा इस्तेफादा करते रहे हैं। आज भी हमने डॉक्टर साहब को यहाँ दावत दी है, वो यहाँ तशरीफ लाए हैं, हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, जिनसे हम आसाबी निज़ाम, उसकी कमज़ोरियाँ, उसकी बीमारियाँ, उसका इलाज, एहतियात, इन चीज़ों पर बात करेंगे जो हमारे सामईन के लिए यकीनन फ़ायदा मंद साबित होंगी। तो आदाब अर्ज़ डॉक्टर साहब।
2: आदाब अर्ज़।
1: डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारी दावत पर यहाँ तशरीफ लाए और जो आपका सब्जेक्ट है न्यूरोलॉजी
2: जी,
1: तो हम इस सिलसिले में आपसे गुफ्तगू करेंगे आज। और हमारी आज की बातचीत का मौजू आसाबी निज़ाम और उसकी कमज़ोरी है और उसके से मुतालिक जो बीमारी है उससे जुड़ी हुई, उसके सिलसिले में हम आपसे बात करेंगे। तो सबसे पहले आप हमारे सामईन को ये बताइए कि आसाबी निज़ाम है क्या।
2: आसाबी निज़ाम एक ऐसा निज़ाम है जिस पर आपकी ज़िंदगी मुनहसर है
1: जी,
2: और इस ज़िंदगी का राज है एक अच्छी सोच
1: जी,
2: और इस सोच से आप जैसा हम सोचेंगे वैसा अपने जिस्म पे उसका असर होता है
1: जी,
2: और अच्छी सोच से एक अच्छा इंसान बनता है। ये अच्छी सोच से जब इंसान बनता है तो उसकी ज़िंदगी उससे बड़ी तोहफा क्या दे सकती
1: है
2: जो उसको एक अच्छा इंसान बना रही।
1: एक सवाल आपकी इस बात से मेरे जहन में आया
2: जी
1: कि कोई शख्स अगर किसी भी आसाबी कमजोरी में या बीमारी में मुब्तला है
2: जी,
1: तो क्या वो अपनी सोच से उस पर काबू पा सकता है?
2: बड़ा अच्छा सवाल किया आपने
1: जी।
2: सोच हर चीज है। अगर आप अच्छा सोचेंगे तो आपको अच्छा होगा, बुरा सोचेंगे तो बुरा होगा। आपको शायद ना मालूम हो कि हम जब अच्छा सोचते हैं और खुशी हासिल करते हैं तो उसमें एक हार्मोन निकलता है।
1: अच्छा।
2: वो दिमाग से निकलता है
1: जी।
2: और उसका नाम है एंडोर्फिन्स
1: जी,
2: ये खुशी का हार्मोन है।
1: तो इससे सेहत को फायदा पहुंचता है?
2: सेहत ही नहीं, आपकी जिंदगी जो है लंबी होती है
1: जी।
2: एक रिसर्च हुई है, वो मैं अपने टेबल के नीचे रखा हूँ
1: जी,
2: और हर एक पेशेंट को बताता हूँ कि एक मुस्कुराहट जिंदगी के 7 साल बढ़ाती है। तो ये है रोल अपनी सोच का, मगर सोच अच्छी होना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब ये शायद मेरा जहाँ तक ख्याल है हर मजहब में ये बात बताई गई है कि अगर आदमी के ख्याल अच्छे हों, नेक हों, तो उसकी सेहत पर उसका बहुत अच्छा असर।
2: अब सुनिए आपको मैं जो है प्रूफ करता हूँ जो आप कहे उसका जो है प्रूफ करता हूँ। अंग्रेजी में एक कहावत है, थॉट्स बिकम वर्ड्स, वर्ड्स बिकम एक्शन, एक्शन बिकम्स हैबिट, हैबिट बिकम्स कैरेक्टर, एंड कैरेक्टर बिकम्स योर डेस्टिनी। तो आपका किस्मत आपकी सोच पे है, एक अच्छी सोच एक अच्छा इंसान बनाती, उससे बढ़ के तोहफा क्या है जिंदगी का?
1: नहीं हो सकता।
2: ये तो अपनी जिंदगी का मकसद है,
1: सही।
2: ये जिंदगी से लेके जाते हैं इस दुनिया से,
1: सही।
2: तो हमें चाहिए कि एक अच्छी सोच रहे
1: हमेशा,
2: और जो आदमी
1: सोच,
2: और जो आदमी उल्टी सोच रखता, जो जो है गंदी सोच रहता, वो गंदे नाली के कीड़ा बन के जो है जिंदगी

0: ज़िंदगी गुजारता, हमेशा डिप्रेशन में, हमेशा जो है एंग्जाइटी में, हमेशा नर्वसनेस में, हमेशा टेंशन में, ये भी क्या जिंदगी है?
1: मसाइल पैदा होते हैं
0: नहीं, इसका असर अपने जिस्म पे होता जी। और वो आदमी एक बिल्कुल छरेरा और बिल्कुल जो है लागिर और जो है बिस्तर पे पड़ा हुआ, ना उठना आता ना बैठना आता ना चलना आता। सोच जो है सबसे बड़ी चीज़ है, तो उसको जो है आप संभाल के, अब देखिए आप बताता हूँ दिमाग का जो एक्शन, आप सुन के परेशान हो जाएंगे। हम गाड़ी चलाते
1: जी,
0: गाड़ी चलाते तो सामने बच्चा आता, फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड में हमको सोचना पड़ता कि किधर जाना और कैसा बच्चे को बचाना।
1: सही,
0: ये है दिमाग का रोल,
1: सेकंड्स के अंदर,
0: सेकंड्स के
1: लम्हे में।
0: कभी चोर आ जाता घर में तो चोर आने से जो है आपका पूरा दिल दिमाग जिस्म ऐसा मुतासिर होता कि जो है कांपने लगते आप, अब बाद वक्त तो कपड़ों में जो है आप पेशाब कर लेते।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो इसका ताल्लुक खौफ से, इसका ताल्लुक दिमाग से, तो दिमाग का असर पूरे आसाब पर होता है। ये आंतों का असर बताया मैं आपको, ब्लैडर पे बताया, तो ये पूरे जिस्म पे जो है, पूरे रगों पे होता, पूरे रगों पे असर होता।
1: तो ये दरअसल ये जो पूरा आसाबी निज़ाम है उसके बारे में आप बता रहे थे
0: जी। तो जब भी उल्टी सोच होएंगी आपको हमेशा जो है
1: डिप्रेशन का,
0: बिल्कुल एक गलत इंसान बनेंगे, और जिंदगी जो है जो एक रोलर कोस्टर के जैसी है, कभी धूप कभी छाँव। तो ये जो है समझना चाहिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेरे घर में बच्चों के लिए एक मखौला लिख कर जो है लटकाया हूँ
1: जी,
0: और वो मखौला है, लाइफ इज नॉट ए प्रॉब्लम टू बी सॉल्व, इट्स ए मिस्ट्री टू बी लिव विद। जिंदगी जिंदा दिली का नाम, मुर्दा दिल क्या खाक दिया। तो हम क्या चाहते कि जो है आप एक अच्छे इंसान बनना और अच्छा जो है काम करना, और फिर जो है बगैर मकसद के, ये याद रखिए, आप ये नहीं सोचना कि कल जो है मैं मरने के बाद मेरा नाम होगा, नहीं, खाली अपने दिल के तशफी के लिए अपना काम करना और चले जाना।
1: इंसान की जिंदगी का मकसद भी यही होना चाहिए
0: जी, बिल्कुल,
1: कि वो एक अच्छा काम करे, एक अच्छी सोच रखे। तो इससे ये साबित होता है
0: जी
1: कि एक अच्छी सोच एक अच्छी सेहत की जामिन होती है।
0: आपको तो दूसरी बात ये बोलना चाह रहा हूँ मैं कि जो है ये देखिए, आप बगैर बीमारी के खाली सोच से जो है आपका पूरा जिस्म मुतासर हो रहा। दूसरा एक ऐसी चीज है, गर्मी, आप तो सुने होंगे ग्लोबल वार्मिंग
1: जी, हाँ जी,
0: और हमेशा हर साल जो है ये
1: बढ़
0: रही है। तो ये बड़े बूढ़े लोगों पे जो है बहुत बुरा असर करती है
1: जी,
0: क्योंकि उनको जो है पसीना बहुत निकलता, और जब पसीना ज़्यादा निकलता गर्मी की शिद्दत से तो आपका सोडियम चले जाता।
1: अच्छा, तो कमजोरी
0: जब सोडियम जाने के बाद कमजोर,
1: तो हम जो
0: जिंदा हैं इलेक्ट्रोलाइट्स पे हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, इनकी कमी या ज्यादती होने से आपका नर्वस सिस्टम पूरा मुबतला होता और होने से वो मरीज बिल्कुल लाखिर हो जाता, ना उठ सकता, ना बैठ सकता, ना चल सकता, ना बात कर सकता।
1: तो इसका तदारुक क्या है डॉक्टर, इसको कैसे इसको ओवरकम कर सकते हैं?
0: एक तो आप देखना कि जो है गर्मी से कैसा आप अपने आप को जो है बचा सकते। अगर आप फैन भी अगर रहा तो बस है, ये ज़रूरी नहीं है कि एसी में जो है आप बैठ के सो रहे हैं, तो फैन भी अगर रहा तो जो है, क्योंकि आप जानते होंगे एवापरेशन कॉजेस कूलिंग। तो जैसा हवा जो है अपने जिस्म पे पानी है उसको उड़ा देती है, तो उसकी वजह से आपको जो है कूलिंग जो है
1: रिलीफ
0: हो जाता और जो है मरीज जो है बिल्कुल नॉर्मल हो जाता।
1: कुछ इसके लिए दवाएं वगैरह या कुछ?
0: अब देखिए जब सोडियम या पोटेशियम, हमको देखना पड़ता, हमारे पास जो है आले हैं जिससे हम ये जान सकते कि सोडियम की कमी,
1: डॉक्टर को दिखाने का मतलब यही है
0: जी, खून में।
1: मैं सिर्फ एहतियाती तदाबीर के तौर पे बात कर रहा था।
0: नहीं नहीं, वो सही है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आदमी जो है किस तरह से जो है उसको इलाज करना, खाली जो है बीमार डाल के जो है लाखिर कर देना नहीं है। अब हमको उसको सोडियम या पोटेशियम का इन्फ्यूजन देते, जो जैसा सोडियम क्लोराइड बॉटल आप सुने होंगे, सलाइन बॉटल, तो सलाइन बॉटल देते। अगर पोटेशियम की कमी है तो पोटेशियम देते इंट्रावीनस, और उसको जो है फौरन जो है मॉनिटर करते।
1: तो यानी वो शख्स जो भी इस तरह की हालत में गिरफ्तार है
0: जी,
1: तो वो डॉक्टर से रुजू होने के लिए उसमें क्या अलामत होती हैं उसकी?
0: अलामत ये होती है कि वो बहुत वीक हो जाते हैं, उनको बात करना नहीं आता, उनको ना उठना आता, ना बैठना आता, ना चलना आता, ना फिरना आता। तो हम फौरन दवाखाना ले जाके जो है उनके इलेक्ट्रोलाइट्स मेजर करके इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेस कर दिए, तो बिल्कुल नॉर्मल इंसान होता।
1: तो उसकी अलामत यही है।
0: आजकल जो है सोडियम जो है बहुत इंपॉर्टेंट
1: है,
0: और सड़कों पे भी लिख रहे हैं कि जो है ज्यादा मत इस्तेमाल करिए, क्योंकि इससे जो है जिस्म में पानी खींचता हो
1: सोडियम,

0: सोडियम, तो पूरा जिस्म जो है मोटा हो जाता और जो है ऑर्गन्स भी जो है ख़राब होते। तो जहाँ तक हो सका सोडियम आमतौर पे 5 से 10 ग्राम जो है
1: वो किन
0: रिक्वायरमेंट
1: चीज़ों
0: है।
1: में पाया जाता है?
0: ये आप कॉमन सॉल्ट जो
1: अच्छा,
0: अपन
1: वो
0: आप जानते हैं कि जो है ज़बान का जो जायका है वो जो है खाली सॉल्ट
1: तो
0: से।
1: कम से कम इस्तेमाल करना
0: जी
1: चाहिए,
0: हाँ, कम से कम इस्तेमाल
1: उसकी कमी भी तो नुकसानदेह।
0: नहीं। कमी बोले तो देखिए, आप जानते होंगे कि इंसान के लिए जैसा मशीन को जो है ऑयल ज़रूरी है, इंसान के लिए गिज़ा ज़रूरी है।
1: बहुत जरूरी,
0: गिज़ा जो है आपकी बैलेंस्ड रहना।
1: बिल्कुल
0: बैलेंस का मतलब होता है विटामिन्स, मिनरल्स, एंटॉक्सिडेंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, एक मकदार भी लिया जाता।
1: जी
0: एक डाइटिशियन होते हमारे
1: जी हाँ
0: ब्रांच
1: जी
0: में, एक डाइटिशियन है और डाइटिशियन लिख के देता हर बीमारी के लिए अलग।
1: हर हॉस्पिटल में
0: शक्कर
1: डाइटिशियन
0: की
1: भी होता
0: बीमारी
1: है।
0: है
1: जी
0: उसका हम लिख के देते कि
1: जी
0: आपकी ग़िज़ा जो है उसके लिहाज से लिखते। ये नहीं कि जो है
1: जी
0: ना आप लंदन की जो है ग़िज़ा लिख रहे, हिंदुस्तान
1: यहाँ
0: के,
1: जो गिज़ा अवेलेबल है
0: और वो भी जो आप रोज़ खाते हैं।
1: हम उसके आदि भी हैं।
0: जी हाँ, जिसके आदि हैं।
1: तो इसकी जो आप जो इसको डायग्नोस करते हैं वो किस तरह डायग्नोस करते हैं?
0: आसाबी कमज़ोरी के लिए हम जो है नर्व्स को जो है मेजर करते हैं।
1: अच्छा,
0: मतलब ये कि जो है नर्व्स के कुछ टेस्ट रहते हैं, स्पेशल टेस्ट रहते हैं, जैसा कि जो है नर्व कंडक्शन वेलोसिटी। तो इलेक्ट्रोमायो न्यूरोग्राफ एक मेथड है, इलेक्ट्रोमायो न्यूरोग्राफ, जिससे हम लोग इसकी वेलोसिटी, जब ये जो रग है इसके ऊपर भी एक लेयर रहती, उसको मायलिन शीथ बोलते हैं। तो मायलिन शीथ से जो है कंडक्शन होता। तो आप रात में अगर आप सो रहे, कोई आदमी आपको टच किया तो फौरन आप उठ
1: फौरन
0: जाते।
1: बिल्कुल
0: क्यों? क्योंकि जो है आपकी रग जो है मुतासिर हुई है,
1: वो
0: तो
1: दिमाग को
0: फौरन जो है
1: फौरन
0: वो दिमाग
1: कहलाती
0: को जाती, दिमाग जो है बोलता चल उठ, कोई तुम्हारे को जो है डिस्टर्ब कर रहे। तो उसके लिए हम लोग नर्व कंडक्शन वेलोसिटी जो 60 से 90 मीटर्स है पर सेकेंड, तो वो मेजर करते। दूसरा क्या है, नर्व बायोप्सी करते। तीसरा क्या है, खून के जो है मायने करते हैं
1: जी।
0: इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। चौथा क्या है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो दिमाग को जो है कि अतराफ रहती है उसको जो है मेजर करके देखते हैं, उससे हमारे को तशखीस मिलती है।
1: तो ये उमूमन घरों में औरतें अक्सर कहा करती हैं कि भाई देखो जो मुझे अभी ये रगों की बीमारी है और ये रगों में जो है कुछ हो गया है, फलाना है, तो वो सही है इसका मतलब
0: अब बिल्कुल सही है
1: कि वो मुतासर होती
0: जी,
1: हैं।
0: बिल्कुल सही है, मगर वो उसको जो है उसके अलामत हैं,
1: अच्छा,
0: तो वो अलामत को जानना बहुत ज़रूरी है कि किस
1: तो
0: तरह से
1: वही
0: तशखीस करेंगे आप।
1: तो क्या उसमें बेहिसी पैदा होती है रगों में
0: नहीं,
1: टच
0: आप
1: करने पे?
0: ताज्जुब करेंगे कि जो है आपको वो सुंदपना आ जाता,
1: अच्छा,
0: यानी
1: वही
0: सेंसेशन ही नहीं रहता।
1: हाँ मैं वही पूछ रहा था।
0: स्पेशली जब ये मुतासिर होते हैं, जब जो है रगा, समझे, रगों के कई वजह हैं, कई वजूहात हैं, जिससे जैसा कि विटामिन डिफिशेंसी है या जो है मिनरल्स हैं, जैसा कि आप सुने होंगे आजकल लेड जो जबान के टेस्ट को
1: जी
0: बढ़ाता है
1: जी
0: और नूडल्स में जो है डाल रहे हैं लोग,
1: जी
0: और जिससे, मगर वो लेड जो है हमारे बच्चों के लिए बहुत पॉइजन है,
1: अच्छा
0: क्योंकि लेड से जो है एनकेफेलोपैथी होती, यानी
1: अच्छा
0: बेहोश होते। लेड से जो है हाथ और पैर गिर जाते,
1: तो ये जो
0: जिसे हम,
1: बाजार में ये चीज़ें तैयार रहती हैं उसमें वो इस्तेमाल होता है?
0: जी हाँ बिल्कुल होता,
1: घरों में तो
0: मगर
1: नहीं होता शायद।
0: नहीं बाजार में होता तो, और जो है नूडल्स में जो है मिला रहे, तो मिला रहे क्यों, उसको टेस्ट आता। मगर
1: वो
0: हर चीज़
1: नुकसानदेह
0: का, एक चीज़ याद रखिए आप, हर चीज़ अगर इत्तेदाल में करे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं,
1: ज़्यादा अगर होंगे
0: मगर
1: तो
0: ज़्यादा अगर
1: नुकसानदेह,
0: टेस्ट अच्छा रहा उसके लिए करे तो फिर बीमारी आ जाए, आयद होती।
1: तो उसका इलाज क्या हो सकता?
0: देखिए, जब भी जो है कोई बीमारी आती है तो उसके वजूहात मालूम, अगर विटामिन की डेफिशिएंसी, जैसा विटामिन B1 उससे बेरी-बेरी होती और
1: जी
0: बिल्कुल लाखिर हो जाता, तो जब तक आप B1 नहीं दिए उस ठीक नहीं होता।
1: ठीक नहीं होता।
0: अब हम लोग टीवी में जो है एक ड्रग देते हैं आइसोनियाजाइड, वो
1: जी
0: जो है जाके रगों को मारती,
1: जी
0: रगों, तो उसको जो है पायरेडॉक्सिन डेफिशिएंसी होती, तो हम पायरेडॉक्सिन उसके साथ देते, एक विटामिन है जो विटामिन B6 बोलते,
1: जी
0: तो वो जो है देते। फिर एक बीमारी है जिसे पेलेग्रा कहते, जिसमें जो है आपके पूरे हाथा पैरा कमज़ोर हो जाते, और वो पेलेग्रा जो है विटामिन B10 की जो है डेफिशिएंसी होती,
1: से
0: जैसा
1: होता है
0: निकोटिन के एसिड
1: जी
0: कहते हैं हम, तो निकोटिन एसिड देने से वो ठीक हो जाता। फिर परनीशियस एनीमिया होता विटामिन B12 की कमी से, तो उसको B12 दे इंजेक्शन देना पड़ता हमारे को,
1: जी
0: तो उससे जो है पूरे नर्व्स रिपेयर हो जाते। तो
1: अच्छा
0: ये तो एक ही है। और दूसरी चीज़ें जो है इन्फेक्शंस हैं, जो आमतौर पे जो है हम देखते हैं, जैसा TB है, लेप्रसी, आप

0: इंतजाम तो सुने
1: जी
0: होंगे,
1: जी जी
0: तो ये से पूरा नर्वस सिस्टम तबाह हो
1: बेकार हो
0: जाता,
1: जाता।
0: हाँ वो टीबी हो या अपना जुजाम हो या जो है डिप्थीरिया हो या जो है कैंसर हो, उसमें भी जो है पूरे रगों में जो है चले जाते,
1: तो वो रगों में
0: तो
1: एहसास बाकी नहीं रहता।
0: नहीं रहता। तो उसके अलामत मैं बताता हूँ, मगर जो है पहले ये मालूम होना कि क्या क्या अब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, बहुत ही कॉमन है अपने मुल्क में,
1: जी
0: जिससे रगां जो है आम तौर पर
1: मुतासर
0: मुतासिर
1: होते
0: होते
1: हैं।
0: हैं, और वो है जैप्टिस, डायबिटीज मलाइटिस, गाउट, समझे। तो
1: ये
0: ये
1: गाउट भी आजकल आम लोगों में बहुत ज्यादा पाया जा रहा है।
0: गाउट एक ऐसी बीमारी है जो मारूसी है आम तौर पे, जो है ये इन्फेक्शियस नहीं है, एक आदमी से दूसरे को लगने की नहीं है, या जो है हवा में कोई जरासीम है उससे नहीं होती, ये
1: लेकिन ये
0: जेनेटिक
1: मौरूसी भी नहीं है डॉक्टर साहब।
0: मारूसी है, क्योंकि जो है गाउट एक यूरिक एसिड की जो है
1: जी हाँ,
0: यूरिक एसिड की वजह से होता, जो ज़्यादा पैदा होता
1: और उसमें ये देखा गया है अक्सर कि लोग जो ये पूछते हैं कि क्या क्या खाना चाहिए,
0: जी
1: तो उसमें तो हर चीज नहीं खाना है, कुछ दो चार चीजें छुटी हैं जो
0: नहीं
1: खा
0: नहीं
1: सकते
0: नहीं क्या
1: हैं।
0: है, ये जो यूरिक एसिड आता है ना वो प्रोटीन से आता है,
1: जी
0: तो हम जैसा गोश्त है
1: नहीं खाना है
0: समझे,
1: उसको।
0: तो गोश्त जो है नॉन वेजिटेरियन फूड्स जो है हम अवॉइड करते हैं,
1: जी
0: जो यूरिक एसिड को जो है पैदा करता, तो ऐसी चीज़ें जो
1: अवॉइड
0: यूरिक
1: करना
0: एसिड
1: पड़ता
0: वो
1: है।
0: अवॉइड करते।
1: और डॉक्टर साहब आजकल जो बीमारी सबसे ज्यादा आम है, बहुत कॉमन है,
0: जी
1: हर तीसरा आदमी जिससे मुतासर है वो है डायबिटीज। तो ये इस बीमारी से क्या संबंध है क्या?
0: बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। डायबिटीज़ हिंदुस्तान जो है डायबिटीज़ कैपिटल है,
1: जी
0: कैपिटल इंडिया इज़ द कैपिटल ऑफ
1: डायबिटीज।
0: डायबिटीज़ इन द वर्ल्ड, तो पूरी दुनिया में जो है डायबिटीज़ हर तीसरा चौथा, जैसा आप बोले कि जो है शुगर
1: उसपे
0: का मरीज़
1: मुतासर
0: है। आप जानते होंगे कि थायराइड की बीमारी सुने होंगे,
1: जी जी
0: और उसमें जो है एक हार्मोन रहता
1: जी
0: थायरोक्सिन, उसकी कमी से होता,
1: होता है
0: और ये जो डायबिटीज है ये इंसुलिन जो पैंक्रिया से सीक्रेट होता
1: जी
0: तो उसकी कमी से होता,
1: जी
0: तो अगर आप इंसुलिन दे दिए तो ही विल वो जो है बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी गुजार सकता, ये मैं तो उसको बीमारी नहीं बोलता,
1: जी
0: मैं बोलता हूँ कि
1: तो वो
0: एक एक
1: इंसुलिन
0: डेफिशिएंट है, एक हार्मोन डेफिशिएंट डिजीज है।
1: तो वो रोज लेना पड़ता है
0: जी
1: फिर।
0: हाँ, तो जरूरी नहीं है कि जो है आप इंसुलिन ले, इंसुलिन के बजाय अद्वियात आ गए, गोलियां आ गई, वो गोलियां खाने से जो है इंसुलिन प्रोडक्शन बढ़ता है, उससे जो है आप ठीक हो जाते, ता हयात लेना पड़ता है।
1: यानी अक्सर लोग इसे बीमारी नहीं कहते हैं,
0: जी हाँ
1: वो लोग कहते हैं कि बस ये गजाई आदतों के ऊपर मुनसर होता है, या फिर वॉक करने से, या ऐसा उससे फायदा होता है।
0: ये बीमारी गजब भी ढा सकती है,
1: जी
0: आप ये समझिए कि ये बहुत ही खतरनाक है अगर आप उसको कंट्रोल ना करें, उसको थामे नहीं। और सब में बड़ा आपका आपकी जुबान है जो चटोरी है
1: जी जी
0: दिल
1: असल
0: को,
1: वही
0: आप
1: नुकसान
0: जानते हैं
1: होता
0: कि
1: है।
0: जो है ये बीमारी में जो है मीठी चीज़ों को अवॉइड करना पड़ता, खा वो गुलाब जामुन हो या डबल का मिठा हो या आइसक्रीम हो, हम जो है इनसे गुरेज करना पड़ता, इस पे इसके लिए आदमी को जो है बहुत ही
1: एहतियात करने पड़ते हैं।
0: इम्पॉर्टेंट विल पावर रहना चाहिए, अगर विल पावर रहा तो वो जो है कंट्रोल कर सकता
1: तो इससे आसाब भी मुतासर होते हैं
0: है। पूरा
1: और
0: पूरा नर्वस सिस्टम ऐसा कि, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि एथेरोस्क्लेरोसिस होती, डायबिटीज जो है एक स्लो पॉइजन है, तो आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता जो है आपके खून की नालियों में ये जो कार्बोहाइड्रेट जो खाते ना आप,
1: जी
0: वो फैट बनता, फैट बन के जो है खून की नालियों में जाके जमा हो जाता, अगर दिल की नालियों में जमा हुआ तो हार्ट अटैक होता, दिमाग की नालियों में जमा हुआ तो फालिज होता, तो इस तरह से पूरे जिस्म को, और एक आम बीमारी है जिसे हम पेरिफेरल न्यूराइटिस कहते हैं,
1: जी
0: पेरिफेरल बोले तो डिस्टल बोले
1: जी
0: तो बिल्कुल आखिरी हिस्सा जिस्म का, जैसा हाथ की उंगलियां हैं, पैर के टोज हैं, वहां पर जो है पूरे ये रग इन्वॉल्व होते, क्योंकि यहाँ पे खून की सप्लाई ज़रा कम हो जाती,
1: जी
0: तो जब जो है ये इसमें जो है सुंदपन आता, चूंटियाँ आती, आग जैसी जो है निकलती है पैरों के तलवों से, हाथों के जो है पाम से, ऐसा मालूम होता कि जैसा आग निकल रही है, तो ये जो है रगों की जो है बीमारी, जो रगा मर रहे, और सुंदपना मतलब कि जो है रग मर गई, जब सुंदपना आता तो हम ग्लव एंड स्टॉकिंग एनेस्थीजिया मिलता, मतलब ये कि जो है हाथ का बीच के पोर्शन से लेके आपके उंगलियों तक शुद्ध हो जाता,
1: जी
0: बिल्कुल सेंसेशन नहीं रहता,
1: तब
0: और
1: इसका
0: पैर,
1: इलाज
0: इसका इलाज बहुत आसान है, सबसे बड़ी चीज़ जो है आपको बोला मैं कि जो है मीठी चीज़ें अवॉइड करना, मीठी चीज़ें दिल को लुभाती,
1: वो नहीं खाना।
0: तो उसको जो है आप जो है जहाँ तक हो आपके ये

0: महंगी जद्दोजहद रहेंगी कि जिंदगी में कि जो है इसको मैं कम खाऊंगा, क्योंकि ये लोग जो है आम तौर पे दावतों में जो है कैसा
1: खा
0: भी जो
1: लेते
0: है
1: हैं।
0: चोरी से खा लेते हैं। तो मैं चाहूंगा कि ये जो मीठी चीजें हैं दिल को लुभाती मगर
1: अच्छा,
0: मुश्किल हैं मगर नामुमकिन नहीं।
1: इसमें डॉक्टर साहब एक चीज़ जो आजकल मार्केट में है
0: जी
1: वो शुगर फ्री टैबलेट्स हैं जो चाय में इस्तेमाल
0: जी
1: होते हैं,
0: जी जी
1: या फिर शुगर फ्री स्वीट्स भी मिलते हैं,
0: जी
1: तो क्या वो भी नुकसानदेह हैं या उससे कोई नुकसान
0: नहीं,
1: नहीं होता?
0: बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जो अब आजकल तो जो है पत्तों से जो है निकाल रहे हैं, पत्तों से जो
1: जी,
0: है निकाल
1: शुगर
0: रहे हैं शुगर।
1: तो
0: अब
1: वो
0: वो शुगर जो
1: नुकसानदेह नहीं
0: है,
1: है।
0: वो शुगर जो है नुकसानदेह नहीं है, क्योंकि ये नेचुरल है, ये
1: हाँ,
0: आर्टिफिशियल है। तो आर्टिफिशियल को हम नए नेचुरल में बदले हैं आजकल की
1: तो वो
0: दुनिया में,
1: इस्तेमाल कर
0: वो कर
1: सकते हैं
0: सकते हैं। आप मीठा भी खा सकते हैं
1: जी,
0: मगर आप जिंदगी का उसूल,
1: इत्तेदाल के साथ।
0: हाँ बस इन जिंदगी का उसूल फॉलो करने से आपको कभी भी कोई बीमारी नहीं आएगी। और शुगर की बीमारी तो बीमारी ही नहीं है अगर आप उसको कंट्रोल करें, आप उसको थामें और जो है कार्बोहाइड्रेट जो है कम कर दिए और जो है अच्छी बैलेंस डाइट जिसके अंदर पूर्ण अपने विटामिन्स रहें, मिनरल्स रहें, एंटॉक्सिड्स रहें
1: वो
0: और
1: सेहत
0: जो
1: के
0: है
1: लिए बेहतर है।
0: प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट एक इत्तेदाल में रहते हैं। और वो डायटिशियन जो है लिख के देते कि शक्कर के मरीज किस तरह से जिंदगी गुजारना।
1: उसमें है कि वो आलू का इस्तेमाल ना करें, गड्ढे की तरकारियों का इस्तेमाल ना करें,
0: आप
1: ऐसी
0: जानते
1: चीज़ें।
0: होंगे
1: जी
0: कि जो है सब में ज्यादा शुगर जो पैदा होता है आमतौर पे अंडरग्राउंड वेजिटेबल्स,
1: जी
0: जैसा कि जो है आलू है, अरवी है, शलजम है, मूली है, गाजर है, जमीखंड है, बीटरूट है, ये
1: इसमें
0: सब
1: बहुत
0: चीज़ों
1: फायदा
0: को
1: होता है।
0: अवॉइड करना चाहिए। मगर सब में बड़ी चीज़ मैं ये बोलूँगा कि जो है आप रोज़ एक आधा घंटा अपने जिस्म के लिए, चुस्ती के लिए, रगों के जो है जिंदा रहने के लिए रोज़ वॉकिंग करें।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें योगा किस हद तक मुफीद होता है?
0: योगा जो है आप ताज्जुब करेंगे, मैं 1952 में मेडिकल कॉलेज ज्वाइन करा जब मेरी किताबों में योगा का मेंशन नहीं था, और आज हर किताब मेडिसिन की जो बिल्कुल साइंटिफिक साइंस है उसके अंदर जो है योगा का चैप्टर है। तो योगा जिंदगी का जो है राज है और वो हर आदमी को किसी तरह से भी 10-15 मिनट कम से कम अलोम विलोम, आपको बताता हूँ, आप परेशान हो जाना कि जो अलोम विलोम कुछ नहीं है, खाली डीप ब्रीदिंग है
1: उसका
0: जो
1: फायदा क्या?
0: गहरी। अब देखिए आपसे तो मैं ज़्यादा जो है ऑक्सीजन ले रहा हूँ, जब गहरी सांस लेता हूँ तो आपसे ज़्यादा ऑक्सीजन ले रहा हूँ। जब ये ऑक्सीजन कहाँ जाती, मेरे दिमाग को,
1: दिमाग।
0: मेरे दिल को, मेरे गुर्दों को, और उससे जो है ये तमाम ऑर्गन्स कभी बीमार होते नहीं।
1: और उसमें वो कपाल भारती भी है।
0: कपालभाति भी है। देखिए हर चीज़ मैं आपको कहा कि जो है इत्तेदाल में करने से कोई नुकसान नहीं होता।
1: और ये जो फ्री हैंड एक्सरसाइज भी होती है तो वो
0: मैं
1: भी
0: तो बोलता
1: फायदा
0: हूँ
1: है।
0: कि आप जो फिजिकल ट्रेनिंग स्कूल में ड्रिल जो करते थे अगर वो कर लिए तो बस है, मगर कम से कम 15 या 20 मिनट अपनी सेहत के लिए
1: देना ज़रूरी
0: एक्सरसाइज
1: है।
0: ज़रूर।
1: नहीं, मेरा भी ऐसा ख्याल है डॉक्टर साहब, मेरा ऐसा मानना है कि एक इंसान जो अपनी ज़िंदगी गुजारता है तो एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए अगर वो एक आध घंटा आधा घंटा सुबह में अगर
0: जी
1: अपना उस अपने अपने आप पर अगर ध्यान दे तो मैं समझता हूँ कि कई बीमारियों से वह महफूज रह सकता है।
0: मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ
1: जी
0: आपकी राय से, और मैं यही चाहूंगा कि मेरे सुनने वाले जो है हर रोज एक 15 मिनट भी अगर गुजारे, ये जरूरी नहीं है कि आप सड़क पे जाके फिरना, आप अपने घर में भी जो है चहलकदमी करें तो
1: जी
0: बस
1: जी
0: है।
1: तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारी दावत पर अपनी गुनाह मसरूफियतों के बावजूद तशरीफ़ लाए और इतनी कारामत बातें हमारे सुनने वालों को बताएं जो आजकल का जो हमारी ज़िंदगी का मेयार है और हम जो ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करते हैं और नादानिस्तगी में भी हम ऐसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करते हैं जो हमारे लिए नुकसानदेह होती हैं। जैसा आपने बताया, अगर इस पर हमारे सामईन अमल करेंगे तो अपनी ज़िंदगी में काफ़ी फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब सर।
0: आधा वर्ष
2: बहुत ही मालूमाती इंटरव्यू अभी आपने सुना, उम्मीद है कि ये हमारे सामईन के लिए बहुत ही कारआमद होगा। डॉक्टर माइक पर सिलसिले के तहत इंटरव्यू आप सुन रहे थे न्यूरोलॉजी पर डॉक्टर रामापत प्रताप माथुर से। इंटरव्यू निगार थे जनाब जाफर अली खान।

0: मेहमान का मुझ पे एहसान क्या, लाखों ही जुल्फों वाले आते हैं घेरा डाले, मेरी क्या बात है।
1: समय ना आप सुन रहे हैं 101.9 FM MHz पर। चलिए हमारे प्रोग्राम नैरंग को आगे बढ़ाते हैं और अब हम आपको सुनाते हैं गीत सुरीले गाता जा, यानी सुरीले गीतों के साथ साथ कुछ बातें भी हम करेंगे। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी छोटी सी, कि हम अपने यानी तनाव को, हम अपने स्ट्रेस को किस तरीके से काबू में करें। यानी स्ट्रेस आज की तो बहुत यानी 90% लोगों स्ट्रेस का शिकार हैं। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कोई ना कोई बात से हमें स्ट्रेस रहता है। हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी स्ट्रेस फ्री है दुनिया में। तो ये सब चीज़ें, स्ट्रेस तो ज़िंदगी में आता ही रहता है आए दिन। किसी भी यानी हम अगर यानी यहाँ से कहीं जा रहे हों तो ट्रैफिक का स्ट्रेस वगैरह वगैरह, इस तरीके के छोटे से छोटे स्ट्रेस से लेकर बड़े से बड़े स्ट्रेस हमारी ज़िंदगी में आते हैं। तो उस पर काबू पाना हमें सीखना होगा, उस पर काबू पाना हमें चाहिए, तभी हमारी ज़िंदगी खुशहाल गुजर सकती है, हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए एक छोटी सी कहानी

आप सुनेंगे आज। किसी शहर में एक पुरसुकून बस्ती थी जिसमें अल्तमश नाम का एक नौजवान रहता था। अल्तमश एक कॉलेज का जहीन तालिब इल्म था। उसके वालिद एक मामूली सरकारी मुलाजिम थे और वालिदा घरेलू ख्वातीन थी। घर के हालात कुछ ज्यादा अच्छे नहीं थे, इसीलिए अल्तमश हमेशा पढ़ाई में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाना चाहता था ताकि अपने वालिदैन का सहारा बने।

हाँ, तो हम बात कर रहे थे अल्तमश की। शुरू में तो सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर जैसे जैसे इम्तिहानात करीब आने लगे, अल्तमश के दिल में अजीब सा खौफ और दबाव बढ़ने लगा। उसके असातिज़ा हर रोज़ अच्छे नंबरों की उम्मीद दिलाते, दोस्त मुकाबले की बातें करते, और घर में भी सबकी नज़रें इस पर टिकी होती। वो रात भर जागकर पढ़ाई करता, मगर फिर भी उसे लगता था कि कुछ नहीं जानता है वो। ऐसा होता है ना कि, यानी बहुत अच्छा मन लगाकर पढ़ने वालों को कभी कभी लगता है कि वो कुछ नहीं जानते, यानी सब कुछ वो भूल चुके हैं। ये सब स्ट्रेस के कारण, ये सब तनाव के, ज़हनी तनाव के वजह से होता है। आहिस्ता आहिस्ता उसकी ज़िंदगी बदलने लगी। वो पहले की तरह हंसना भूल गया, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगता। रात को सोने जाता तो दिमाग में सिर्फ किताबों और इम्तिहान का ख्याल घूमता रहता। इसके चेहरे की रौनक जैसे खत्म हो गई थी। एक दिन कॉलेज में इम्तिहान की तैयारी के दौरान उसे अचानक चक्कर सा आया और वो जमीन पर गिर पड़ा। असातिज़ा फौरन उसे अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने उसका मायना किया और कहा कि, यानी ये हम सुनते हैं कुछ देर में, ये सुरीले गीतों के बाद।

और सामाइन आप सुन रहे हैं गीत श्रीलेख गाता जा प्रोग्राम। तो कहानी को हमारी आगे बढ़ाते हैं। हम सुन रहे थे कि अल्तमश चकराकर गिर पड़ा और डॉक्टर के पास उसे ले जाया गया। डॉक्टर ने उसे देखकर कहा कि ये लड़का जिस्मानी बीमारी का शिकार नहीं बल्कि शदीद जहनी तनाव का शिकार है। अगर इसने खुद को आराम न दिया तो हालात मजीद खराब हो सकते हैं। यह सुनकर अल्तमश के वालिदैन परेशान हो गए। घर आकर उसकी वालिदा ने बहुत मोहब्बत से उसके सर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा कामयाबी सिर्फ नंबर लेने का नाम नहीं। अगर तुम्हारी सेहत और खुशी खत्म हो जाए तो ऐसी कामयाबी का क्या फायदा। ये अल्फाज उसके दिल में उतर गए। हालांकि यानी बहुत सी बातें लोग कहते हैं लेकिन माँ का कहना, माँ ने जो कहा था उसको, और उस वक्त ख़ास तौर से जब यानी वो तनाव के वजह से गिर पड़ा था, तो उस वक्त वो बातें उसे बहुत अच्छी लगी और वो बातें उसके जहन नशीन भी हो गई। अगले दिन उसके कॉलेज में एक नए उस्ताद आए जिनका नाम फहद था। वो जो फहद सर थे वो सिर्फ किताबी इल्म नहीं बल्कि ज़िंदगी गुजारने के तरीक़े भी सिखाते थे। इन्होंने क्लास में सब तलबा से पूछा, आप में से कितने लोग दबाव महसूस करते हैं, यानी जहनी दबाव महसूस करते हैं पढ़ाई की वजह से। तकरीबन पूरी क्लास ने हाथ खड़े कर दिए। फहद सर ने मुस्कुराकर कहा, दबाव जिंदगी का हिस्सा है मगर इसे संभालने का तरीका सीखना जरूरी है। ये कहकर उन्होंने चंद बातें अपने तलबा को बताईं।

समय ने हमारी कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। तो मैं कह रही थी कि वो जो नए उस्ताद आए थे फहद सर, उन्होंने अपने तुलबा से कुछ बातें कहीं। वो ये थी कि उन्होंने कहा कि सबसे पहले अपने वक्त को मुनज़्ज़म करें। जब इंसान हर काम आखिरी वक्त पर छोड़ देता है तो दबाव बढ़ जाता है। दूसरा, अपने जिस्म को आराम दें, अच्छी नींद, मुनासिब खाना और वर्जिश जहनी सुकून देते हैं। तीसरा ये कि हर वक्त सिर्फ कामयाबी के बारे में ना सोचें बल्कि अपनी कोशिश पर तवज्जो दें। उस्ताद की ये सारी बातें अल्तमश ने बहुत गौर से सुनी। उस दिन के बाद उसने अपनी जिंदगी बदलने का फैसला किया। उसने एक टाइम टेबल बनाया। अब वो मुसलसिल कई घंटे पढ़ने के बजाय वक्फा लेकर पढ़ता। सुबह जल्दी उठकर करीबी पार्क में वॉक करता। कभी कभी दोस्तों के साथ हल्की फुल्की बातें भी कर लिया करता। शुरू में उसे लगता था कि शायद इस तरह वक्त जाया होगा, मगर चंद दिन बाद उसने खुद में हैरत अंगेज तब्दीली महसूस की। उसका जहन पहले से ज्यादा पुरसुकून रहने लगा। अब वो चीजें जल्दी याद कर लेता था। उसकी नींद बेहतर हो गई और चेहरे पर दोबारा मुस्कुराहट आने लगी।

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गीत सुरीले गाता जा। तो कहानी हमारी इस तरीके से आगे बढ़ती है कि एक दिन अल्तमश का दोस्त इमरान इसके पास आया। इमरान भी शदीद दबाव का शिकार था। उसने परेशान होकर कहा, मुझे लगता है कि मैं इम्तिहान में नाकाम हो जाऊंगा, मुझे कुछ याद नहीं रहता, वगैरह वगैरह। तब अल्तमश ने कहा कि मैं भी इस हालत से गुजर चुका हूँ, मगर मैंने सीखा है कि दबाव से लड़ने के बजाय और उसे डरने के बजाय हमें समझना ज़रूरी है कि इंसान मशीन नहीं होता, इंसान के लिए आराम भी ज़रूरी है। फिर उसने वो तमाम बातें बताई जो फहद सर ने सिखाई थी। दोनों दोस्त रोज़ शाम को कुछ देर वॉक करते, एक दूसरे से दिल की बातें करते और मिलकर पढ़ाई करते। आहिस्ता आहिस्ता इमरान की हालत भी बेहतर होने लगी। इम्तिहान का वक्त आया। इस बार अल्तमश पहले की तरह खौफजदा नहीं था, बल्कि वो बहुत ही यानी कॉन्फिडेंट था। उसने कहा कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, बाकी नतीजा अल्लाह पर छोड़ दूंगा। ये सोच उसके दिल को सुकून देने लगी। चंद हफ्तों बाद जब नतायज का ऐलान हुआ, अल्तमश ने बेहतरीन नंबरात हासिल किए। इसके वालिदैन खुशी से रो पड़े, मगर इस बार उसकी खुशी सिर्फ अच्छे नंबरों की वजह से नहीं थी, बल्कि इसलिए थी कि उसने ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा सबक सीख लिया था। इसी तरीके से आगे से उसने कभी यानी खौफ को और ज़हनी दबाव को उस पर हावी होने नहीं दिया, और इस तरीके से वो बहुत आगे बढ़ता गया। और उसकी बातें देखकर और उसके अमल को देखकर दूसरे लड़के भी, दूसरे उसके दोस्त भी इमरान और दूसरे लड़के भी इसी तरीके से यानी आगे बढ़ने लगे। तो है ना सामाइन, के जब हम डर और खौफ अपने अंदर से निकाल देते हैं तो ख़ुद ब खुद हम आगे बढ़ते हैं, यानी कोई चीज़ हमारी यानी हमारी कामयाबी में रुकावट नहीं बन सकती।

ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती, ये खजाने तुझे मुमकिन है खराबों में मिलें। इंसान को कभी जाहिरी चमक पर ना जाना चाहिए, असल खूबी अक्सर सादगी और शाइस्तगी में मिलती है, ना कि दिखावे में। दर्द को मेयार बनाए, जिसने दुख सहा हो वो दूसरों के साथ वफा निभाना बेहतर जानता है। लोगों को माजी से जज न करें, किसी का टूटा हुआ हाल

0: उसके मजबूत किरदार की निशानदेही भी हो सकता है। उम्मीद न छोड़ें, मुश्किल हालात में भी खैर और खलूस के खजाने मौजूद हैं, बस देखने वाली नजर चाहिए। जिंदगी की सच्ची दौलत अक्सर चमकते महलों में नहीं बल्कि टूटे हुए दिलों और सादा लोगों के अंदर छुपी होती है।
1: नदीम अख्तर जैदी से अभी आप पयाम शब सुन रहे थे। आप सुन रहे हैं 101.9 FM मेगाहर्ट्ज़ पर। आज का उर्दू प्रोग्राम यहीं पर ख़त्म होता है। कल इसी वक्त यानी 9:30 बजे हम आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे उर्दू प्रोग्राम नए रंग लेकर। तो तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त।

0: ये आकाशवाणी हैदराबाद है, आप सुन रहे हैं 101.9 FM मेगाहर्ट्ज पर। इस वक्त रात के 11 बजने ही वाले हैं, कुछ देर में समाचार दिल्ली से प्रसारित होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने यूएई के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
2: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी पर प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और यूएई ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, निवेश और व्यापार में सहयोग बढ़ाने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए हैं। संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स के लिए रवाना हो गए। ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने वैश्विक शासन में सुधार और उसे बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जारी वक्तव्य में ये बात कही। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इन चुनौतियों और उनसे जुड़े जरिए देने का आह्वान किया। उन्होंने संघर्ष की रोकथाम के प्रयासों में शामिल होने की आवश्यकता पर भी बल दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्य साई जिले के पुट्टपर्थी में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान एएमसीए निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर एक जनसभा में रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल

0: पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को आज कर्तव्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि निलंबित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच कराई जाएगी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कार्यरत महिला स्नातकोत्तर रेजिडेंट डॉक्टर की अगस्त 2024 में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। विधानसभा में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने प्रश्नकाल, बहस, विधेयकों और बजटों के सीधे प्रसारण की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस राज्य की जनता को विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की गतिविधियों को देखने का पूरा अधिकार है और ये सत्र के सीधे प्रसारण के माध्यम से ही सुनिश्चित किया जा सकता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। कुलकर्णी रसायन विज्ञान के लेक्चरर हैं और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीआई की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थे। एजेंसी ने पिछले 24 घंटों में देश भर में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मोबाइल फोन जब्त किए। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में आज हरजिंदर कौर ने कांस्य पदक जीता। उन्होंने महिलाओं की 69 किलोग्राम भार वर्ग के स्नैच में 96 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक अपने नाम किया। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भारतीय युवा मुक्केबाजों ने आज 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। भारत ने अंडर 17 वर्ग में 8 कांस्य पदक जीते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय पूर्णिमा सामंत कड़ाकोटे। Prime Minister Narendra Modi today reiterated India's support for safe and unimpeded navigation through the Strait of Hormuz, underscoring its importance for regional stability as well as global energy and food security. After high-level talks with UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan in Abu Dhabi, Prime Minister Modi strongly condemned recent attacks on UAE.
2: Hormuz ko free, open aur safe banaye rakhna. ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। ब्रदर, भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
1: Prime Minister Modi arrived in UAE this morning on the first leg of his five-nation tour covering the UAE and Europe. He was received by UAE President at the presidential airport and accorded a ceremonial welcome with UAE F-16 fighter jets escorting his aircraft as it entered Emirati airspace. Mr. Modi expressed gratitude to the UAE leadership for the warm reception, noting in a social media post that he looked forward to strengthening cooperation across key areas including energy, investment and supply chains. Concluding his UAE visit, the Prime Minister left for the second leg of his tour to Netherlands. Thereafter, Mr. Modi will visit Sweden, Norway and Italy during the six-day tour. Foreign ministers of BRICS have reiterated their commitment to reform and strengthen global governance. In the outcome document, the ministers called for a more equitable, democratic, and accountable international and multilateral system. They noted rising global polarization and distrust and urged collective action to strengthen international peace and security. The ministers also called for addressing global challenges through diplomatic and political means to reduce conflict risks and stressed the importance of conflict prevention by tackling root causes. The ministers stressed their commitment to uphold multilateralism as necessary to address challenges threatening their shared planet and future, such as climate change. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today addressed the open session on the second day of the BRICS Foreign Ministers meeting. He said India remains committed to working with all partners in advancing the goal of reformed and effective multilateralism.

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत मेरे मन मीत आपके लिए स्वागत करती हूं मैं कुसुम। ख्वाबों से न जाओ कि अभी रात बहुत है, पहलू में तुम आओ कि अभी रात बहुत है, कट जाए यूं ही प्यार की बातों में हर एक पल, कुछ जागो जगाओ कि अभी रात बहुत है। बहुत प्यारा सा गीत आपके लिए मैं लेकर आई हूं फिल्म एक फूल दो माली से आशा भोसले की आवाज में, आइए सुने।

दूर दूर तक फैली हुई हैं रात की बाहें, रोशनी के फूल जुगनुओं की तरह चमक रहे हैं, मोहब्बत के ख्वाब पलकों पर महक रहे हैं, हसीन ख्याल धड़कनों से लिपटे हैं। बहुत हसीन है ये पल, ये लम्हे, ये रात, बस एक इल्तिजा सी कांपते होठों पर आकर रुक सी जाती है। वो इल्तिजा गीत बनकर कुछ कह रही है। क्या कह रही है, आइए सुने इस गीत में।

देखिए, आपका जी किधर गया ये तो आप ही जाने, लेकिन ये जो जी है ना, इसे जरा संभाल कर रखा कीजिए, क्योंकि सबके प्यार की अलग अलग परिभाषाएं हैं। आपके दिल की क्या परिभाषा है ये तो आप ही जाने। मेरा अपना मानना है कि जैसा जिसका दिल वैसा उसका प्यार, और जैसी जिसकी फितरत वैसी उसकी मोहब्बत। प्यार गलत नहीं होता प्रिय, परिभाषाएं गलत हो जाती हैं। वैसे मोहब्बत पर मुझे बहुत ही प्यारा गीत याद आता है, फिल्म किस्मत का। आइए आप भी सुनिए।

अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म ये हम नहीं जानते। बस इस दास्तां में हम उलझे रहते हैं और उलझे रहते हैं मेरे दिन और रात। देर तक रोशनी रही कल रात, मैंने ओढ़ी थी चांदनी कल रात। कल रात यादों की आगोश में सो गई, फिर भी आज की रात में है बाकी सी कल रात। ये आती जाती रातें जाकर भी कुछ कुछ चिपकी सी रह जाती हैं, थोड़ी खिड़की से, थोड़ी पर्दे से, थोड़ी सिरहाने से, और याद बनकर महकती रहती हैं। फिर जब अगली रात लौट कर आती है ना, तो फिर पूछती है, याद किया दिल ने कहाँ होता।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: नब्बे वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
2: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
1: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
2: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
1: आकाशवाणी के संग यादों के रंग सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर।

हेलो हिंदुस्तान का तेरा तू हेलो मैं रंगून से बोल रहा हूँ मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ हाँ हाँ

जी हाँ, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। गीत मेरे मनमीत के सफर पर आज मैं हूँ आपके साथ कुसुम। किसी ने क्या खूब लिखा है कि इश्क को एक उम्र चाहिए और उम्र का कोई एतबार नहीं। लेकिन उम्र को दरकिनार करते हुए साहिल लुधियानवी साहब क्या खूब लिखते हैं फिल्म वक्त में, आइए हम सभी सुने।

आपको पता है जोहरा जबी का मतलब? जी, जोहरा जबी का जो मतलब होता है वो होता है बहुत खूबसूरत चेहरे वाली, और जो ग्रह है शुक्र ग्रह, उसकी तरह मतलब चमकते माथे वाली जो महिला होती है, सुंदर चेहरे वाली, उसे ये कहा गया है जोहरा जबी। वैसे तुझ पे कुर्बान मेरी जान कहना कितना आसान है ना, काश कि इतना आसान होता निभाना भी। कहने वाले तो क्या क्या कह जाते हैं, देखिए अगले गीत में क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं, हम तुम युग युग से ये गीत मिलन के गाते रहे हैं। आइए हम सभी

फिल्म मिलन का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। आइए सुनते हैं अगला गीत, फिल्म साहिब बीवी और गुलाम से गीता दत्त की आवाज में।

इसी गीत के साथ ही गीत मेरे मन में यहीं तक कुसुम को दीजिए इजाजत, लेकिन आप जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। फिलहाल इस चैनल पर अब आपके लिए है समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने यूएई के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और यूएई ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, निवेश और व्यापार में सहयोग बढ़ाने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए हैं। संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंच गए हैं। ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने वैश्विक शासन में सुधार और उसे बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जारी वक्तव्य में ये बात कही। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इन चुनौतियों और उनसे जुड़े सुरक्षा खतरों का जवाब राजनयिक उपायों के जरिए देने का आह्वान किया। उन्होंने संघर्ष की रोकथाम के प्रयासों में शामिल होने की आवश्यकता पर भी बल दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्थी में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान एएमसीए निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर एक जनसभा में रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को कार्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित कर दिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि निलंबित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच कराई जाएगी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कार्यरत महिला स्नातकोत्तर रेजिडेंट डॉक्टर की अगस्त 2024 में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। विधानसभा में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने प्रश्नकाल, बहस, विधेयकों और बजटों के सीधे प्रसारण की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस राज्य की जनता को विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की गतिविधियों को देखने का पूरा अधिकार है।

0: और ये सत्र के सीधे प्रसारण के माध्यम से ही सुनिश्चित किया जा सकता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। कुलकर्णी रसायन विज्ञान के लेक्चरार हैं और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीई की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थे। एजेंसी ने पिछले 24 घंटों में देश भर में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मोबाइल फोन जब्त किए हैं। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा की घोषणा कर दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से केवल एनटीए के आधिकारिक चैनलों पर ही भरोसा करने का अनुरोध किया है। परीक्षाएं दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएंगी। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में कल हरजिंदर कौर ने कांस्य पदक जीता। उन्होंने महिलाओं की 69 किलोग्राम भार वर्ग के स्नैच में 96 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय पूर्णिमा सामंत कड़ाकोटी। Prime Minister Narendra Modi has arrived in the Netherlands for the second leg of his five-country tour. He was received by the Dutch Foreign Minister Tom Berendsen at the airport. During the visit from 15 to 17 May, the Prime Minister to hold bilateral talks with Dutch Prime Minister Rob Jetten and to call on their majesties, the King and the Queen. Today, PM Modi will address the Indian community and meet CEOs of leading Dutch companies. Several important agreements are expected to be signed, particularly in the fields of semiconductor chips and AI, where the Netherlands stands as global leader. The visit of PM carries significance beyond bilateral ties and is expected to shape broader India-EU relations following the recently concluded India-Europe Free Trade Agreement. Prime Minister Narendra Modi has reiterated India's support for safe and unimpeded navigation through the Strait of Hormuz, underscoring its importance for regional stability as well as global energy and food security. After high-level talks with UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan in Abu Dhabi, Prime Minister Modi strongly condemned recent attacks on UAE.
2: Almost free, open or safe banaye rakha, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। ब्रदर, भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
1: Central Bureau of Investigation CBI has arrested the kingpin in connection with alleged irregularities in paper leak related to NEET UG 2026 examination. The agency said that PV Kulkarni has been arrested at Pune after thorough interrogation. PV Kulkarni is a chemistry lecturer involved in the process of examination on behalf of National Testing Agency. He had access to the question papers. Meanwhile, the National Testing Agency, NTA, yesterday announced 21st of June as date for reconduct of NEET UG 2026 exam. Central Board of Secondary Education, CBSE, has announced a two-stage review process for Class 12 students dissatisfied with their results. Students can apply online for scanned copies of evaluated answer books from the 19th to the 22nd of this month at 700 rupees per subject, while applications for verification and re-evaluation can be submitted from the 26th to the 29th. Union Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw has stated that Made in India paper tools have focus on quality, functionality and sustainability. In a social media post yesterday, Mr. Vaishnaw said he met two young entrepreneurs, Aparna and Dinesh, who are behind RODA notes. The minister added that good stationery has always been close to him. Advocating for greater transparency in the West Bengal Assembly, Chief Minister Suvendu Adhikari called for live broadcast of question hour, debates, bills and budgets. He said people

वक्त हुआ है 12:10 और ठीक 57 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा मैं हूँ राखी आपके साथ।

अंधा कानून फिल्म का गीत आपने सुना आशा भोसले और एसपी बालसुब्रमण्यम की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। शनिवार की छुट्टी के वो सुकून भरे पल जब घर की दीवारें भी जैसे अपनापन महसूस कराने लगी हैं, न भाग दौड़ न किसी काम की जल्दबाजी, बस आराम से बीतते हुए पल और मन को हल्का कर देने वाला सुकून।

जानी दुश्मन फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। वर्मा मलिक ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। वाकई घर में सुकून से बिताया गया वीकेंड पूरे हफ्ते की थकान उतार देता है। कुछ पल आराम, अपने लोगों का साथ, मनपसंद गीत और बिना किसी जल्दबाजी के बीतता दिन, यही तो असली राहत है। ऐसा लगता है जैसे भागती हुई जिंदगी थोड़ी देर के लिए ठहर गई हो और दिल धीरे से कह उठे, अब चैन मिला।

चोर पुलिस फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। इसे लिखा निदा फाजली ने और संगीत दिया आरडी बर्मन ने। शनिवार का दिन जब घर में सुकून से बीतता है तब महसूस होता है कि थकान सिर्फ शरीर में नहीं मन में भी जमा हो जाती है। पूरे हफ्ते की भागदौड़, जिम्मेदारियां, समय की चिंता और हर पल कुछ न कुछ सोचते रहने की आदत, इन सब के बीच इंसान खुद से ही दूर हो जाता है। फिर आता है ऐसा शांत सा दिन जहां सुबह की चाय जल्दी जल्दी नहीं पी जाती, जहां घड़ी बार बार नहीं देखनी पड़ती, जहां मन करे तो पुराने गीत सुन लो, मन करे तो बस खामोशी से बैठे रहो। ऐसे पल हमें याद दिलाते हैं कि खुशी हमेशा बड़ी चीजों में नहीं होती। कभी कभी सबसे बड़ा सुकून अपने घर के एक शांत कोने में बैठकर बिना किसी चिंता के बस चैन से सांस लेने में होता है।

फ्री लव फिल्म का गाना आपने सुना महेंद्र कपूर की आवाज में। असद भोपाली ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

वक्त हुआ है 12:33 और ठीक 50 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस वक्त आप सुन रहे हैं निशिगंधा। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

दूसरा आदमी फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया राजेश रोशन ने। सच में अच्छे गीतों में एक अजीब सी ताकत होती है। बाहर चाहे कितनी भी घनघोर गर्मी क्यों ना हो, लेकिन मनपसंद गाने कानों में पड़ते ही माहौल कुछ हल्का लगने लगता है। गर्म हवाएं और थका देने वाला मौसम, इन सब के बीच जब कोई सुरीला गीत बज उठे तो जैसे मन को ठंडी छांव मिल जाती है। कभी पुराने मधुर गीत, कभी हल्के फुल्के मुस्कुराते नगमे, तो कभी दिल को छू लेने वाली धुनें, ये सिर्फ मनोरंजन नहीं करते बल्कि मन को राहत भी देते हैं। कई बार तो ऐसा लगता है जैसे गाने हमारे मूड को समझते हों। थके हुए दिन में वही गीत थोड़ी ताजगी दे जाते हैं। उदासी में मुस्कुराते हम मुस्कुराने से लगते हैं और गर्मी से चिड़चिड़ाए मन को भी ये गीत शांत कर देते हैं।

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग, सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर।

वक्त हुआ है 12:46 और ठीक 30 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस वक्त आप सुन रहे हैं निशिगंधा। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत।

बाबू फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया राजेश रोशन ने। पुराने गीतों की बात ही कुछ और है, उनके शब्द, उनकी धुन और उनकी सादगी दिल को छू जाती है। वो सिर्फ कानों में नहीं बजते, सीधे दिल में उतरते हैं। शायद इसीलिए कहते हैं कि कुछ गीत मौसम नहीं बदलते, लेकिन मौसम सहने की ताकत जरूर दे देते हैं। और सच कहें तो गर्मी की लंबी थकाऊ दोपहर और रात, अगर इस समय अच्छे गीतों का साथ मिल जाए तो ये गर्मी के दिन बिताना आसान हो जाए।

वक्त हुआ है 12:59 और ठीक 10 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 1 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 1:10 पर गीत सुहाने मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत दीजिए।

प्यासा सावन फिल्म का गाना आपने सुना सुरेश वाडकर और लता मंगेशकर की आवाज में। गुलशन बाबरा ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण के लिए नीदरलैंड्स पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर उनका स्वागत नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री टॉम बेरेंडसेन ने किया। 15 से 17 मई तक चलने वाले इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और राजा तथा महारानी से भेंट भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की प्रमुख कंपनियों के कार्यकारी अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। सेमीकंडक्टर चिप्स और एआई के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौते होने की भी संभावना है। व्यापार के दृष्टिकोण से नीदरलैंड्स भारत का प्रमुख आर्थिक साझेदार है और यूरोप में तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य भी है। प्रधानमंत्री ने होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने यूएई के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और यूएई ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, निवेश और व्यापार में सहयोग बढ़ाने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार करने में आसानी और जीवन जीने को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर उपकर, कर या अधिभार लगाने से संबंधित एक समाचार संस्थान की रिपोर्ट को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को कार्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि निलंबित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच कराई जाएगी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कार्यरत महिला स्नातकोत्तर रेजिडेंट डॉक्टर की अगस्त 2024 में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। कुलकर्णी रसायन विज्ञान के लेक्चरर हैं और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थे। एजेंसी ने पिछले 24 घंटों में देश भर में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मोबाइल फोन जब्त किए। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा की घोषणा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने

वक्त हुआ है 1:10 और ठीक 59 सेकेंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत सुहाने मैं हूं राखी आपके साथ।

आराम फिल्म का गाना आपने सुना मुकेश की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा और संगीत दिया अनिल बिस्वास ने।

0: ठोकर फिल्म से आपने ये गीत सुना तलत महमूद की आवाज में। मजाज लखनवी ने इसे लिखा और संगीत दिया सरदार मलिक ने। ये वो एहसास है जब दिल में इतनी बातें हों कि शब्द भी साथ छोड़ दें। कभी यादें बेचैन करती हैं, कभी खामोशी, और ऐसे में पुराने गीत जैसे हमारे दिल की तरफ से बोलने लगते हैं। रात तन्हा हो, हवा चुप हो और कोई पुराना नगमा धीरे से बज उठे तो दिल अपने सारे राज खुद ही सुनाने लगता है।
1: प्यार पर

सोने की चिड़िया फिल्म का गाना आपने सुना, तलत महमूद और आशा भोसले की आवाज़ में, साहिर ने इसे लिखा और संगीत दिया ओपी नैयर ने। प्यार पर बस तो नहीं है मेरा लेकिन फिर भी, तू बता दे कि तुझे प्यार करूं या ना करूं। मोहब्बत भी कितनी अजीब चीज़ है, दिल अपने आप किसी की तरफ खिंचता चला जाता है और इंसान बस महसूस करता रह जाता है। कभी ये सुकून बन जाती है, कभी एक मीठी सी बेचैनी। फिर भी लोग मोहब्बत से दूर नहीं जाना चाहते, क्योंकि कुछ एहसास दर्द देकर भी दिल के सबसे करीब होते हैं।

फुटपाथ फिल्म का गाना आपने सुना तलत महमूद की आवाज में। अली सरदार जाफरी ने इसे लिखा और संगीत दिया खयाम ने। शामे गम की कसम, आज गमगी हैं हम, आ भी जा आज मेरे सनम। इस गीत में इंतजार, उदासी और मोहब्बत तीनों एक साथ महसूस होते हैं। ढलती शाम, खामोश फिजा और किसी अपने की कमी। कुछ पुराने गीत सिर्फ चुने नहीं जाते, इनको जिया जाता है, समझा जाता है और महसूस किया जाता है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

वक्त हुआ है 1:32 और ठीक 9 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस वक्त आप सुन रहे हैं गीत सुहाने। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

भरोसा फिल्म का गाना आपने सुना रफी की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया रवि ने।

मोहर फिल्म का गाना आपने सुना तलत महमूद की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा और संगीत दिया मदन मोहन ने। कुछ यादें दिल को सुकून देती हैं और कुछ चुपके से दर्द से भी गहरा दर्द देती चली जाती हैं। लेकिन सच यह है कि जो दिल के करीब होते हैं उनकी याद कभी पुरानी नहीं होती।

पठान फिल्म का गाना आपने सुना तलत महमूद की आवाज में। खावर जमा ने इसे लिखा और संगीत दिया जिमी ने। सूनी सी राहों में तेरी याद का मौसम, हर मोड़ पे लगता है कि तुम मिल ही जाओगे। दिल आज भी चुपके से यही कहता है, कुछ दूर नहीं हो तुम, बस आवाज दो तो चले आओगे। कितनी ही दफा चाहा कि भूल जाएं तुम्हें, लेकिन ये दिल हर बार तुम्हारा नाम ले बैठता है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो बिछड़कर भी हर धड़कन में साथ निभाते रहते हैं।

ये रास्ते हैं प्यार के, इस फिल्म से आपने ये गाना सुना आशा भोसले की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया रवि ने। ये रास्ते हैं प्यार के, चलना संभल संभल के। मोहब्बत सिर्फ मुस्कुराहटों का नाम नहीं, कभी इंतजार, कभी तन्हाई, कभी अनकही बातों का सिलसिला भी है। फिर भी लोग इस राह पर चल पड़ते हैं, क्योंकि दिल को एक उम्मीद हमेशा रहती है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा होगा जो हमारे जज्बात समझ लेगा।

छाया फिल्म का गाना आपने सुना तलत महमूद और लता मंगेशकर की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया सलिल चौधरी ने। इतना तो मुझसे ना प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, कभी इस शहर कभी उस राह गुजरता हूँ, अपने ही ख्यालों में कहीं खोया रहता हूँ। मेरे पास ठहराव का कोई घर नहीं, बस यादों की धुंध है और तन्हा सफर। लेकिन जब तुम्हारा जिक्र होता है ये भटकता मन कुछ पल को ठहर जाता है, लगता है जैसे सूनी शाम में दूर कहीं कोई दीपक जल उठा हो।

किनारे किनारे फिल्म का गाना आपने सुना तलत महमूद की आवाज में, न्याय शर्मा ने इसे लिखा और संगीत दिया जयदेव ने। वक्त हुआ है 1:56 और ठीक 17 सेकंड। अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 2 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 2:10 पर रात सुरमई मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत दीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण के लिए नीदरलैंड्स पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर उनका स्वागत नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री टॉम बेरेंसी ने किया। 15 से 17 मई तक चलने वाली इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और राजा तथा महारानी से भेंट भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। सेमीकंडक्टर चिप्स और एआई के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी संभावना है। व्यापार के दृष्टिकोण से नीदरलैंड्स भारत का प्रमुख आर्थिक साझेदार है और यूरोप में तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य भी है। प्रधानमंत्री ने होर्मूज जल डबरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने यूएई के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और यूएई ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, निवेश और व्यापार में सहयोग बढ़ाने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार करने में आसानी और जीवन जीने को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर उपकर कर या अधिभार लगाने से संबंधित एक समाचार संस्थान की रिपोर्ट को खारिज कर दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन पदभार ग्रहण करने के बाद आज सिक्किम की अपनी पहली यात्रा पर जाएंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति गंगटोक में सिक्किम राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग गोले और केंद्रीय उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी गंगटोक के मानन केंद्र में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने महिला सशक्तिकरण समिति का गठन किया है। लोकसभा से भाजपा सांसद डॉ डी पुरंदेश्वरी समिति की अध्यक्ष होंगी। समिति में लोकसभा से 18 और राज्यसभा से 10 सदस्य शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को कार्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोपों में निलंबित किया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि निलंबित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच कराई जाएगी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कार्यरत महिला स्नातकोत्तर रेजिडेंट डॉक्टर की अगस्त 2024 में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा की घोषणा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से केवल एनटीए के आधिकारिक चैनलों पर ही भरोसा करने का अनुरोध किया है। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। 188 रन के लक्ष्य को लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही हासिल कर लिया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से कोलकाता के ईडन गार्डन में होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

वक्त हुआ है 2:10 और ठीक 58 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई। मैं हूं राखी आपके साथ।

नमक हराम फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया

फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया आर डी बर्मन ने। रात सुरमई हो और साथ में सुरीले गीत हो तो जैसे थका हुआ मन भी धीरे धीरे मुस्कुराने लगता है। खामोश रात, हल्की ठंडी हवा और कहीं दूर बजता कोई पुराना नगमा, बस यही पल दिल को सुकून से भर देते हैं। ऐसी रातों में यादें भी मीठी लगती हैं, बातें भी धीमे धीमे दिल में उतरती हैं और वक्त जैसे कुछ ठहर सा जाता है।

राजपूत फिल्म का गाना आपने सुना, किशोर कुमार की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। मेरे संग संग आया तेरी यादों का मेला, एक ऐसा एहसास जहां इंसान कहीं भी चला जाए कुछ यादें उसका हाथ कभी नहीं छोड़ती। भीड़ हो या तन्हाई, दिल के किसी कोने में कोई पुरानी आवाज, कोई मुस्कुराहट, कोई अधूरी बात साथ चलती रहती है। कभी ये यादें सुकून देती हैं तो कभी चुपचाप आंखें नम कर जाती हैं।

देवता फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। इसे लिखा गुलजार ने और संगीत दिया आर डी बर्मन ने।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

वक्त हुआ है 2:29 और ठीक 27 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

द ग्रेट गैम्बलर फिल्म का गाना आपने सुना आशा भोसले और शरद कुमार की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया आर डी बर्मन ने। कुछ एहसास ऐसे होते हैं जिन्हें लंबी बातों की जरूरत नहीं पड़ती। दिल अपनी सबसे गहरी बात अक्सर बहुत सादगी से कह देता है। कभी किसी की मौजूदगी सुकून बन जाती है, कभी उसकी यादें खामोशी में भी साथ चलती रहती हैं। मोहब्बत का रंग भी अजीब होता है, उसमें शिकायतें भी होती हैं, इंतजार भी। दो लफ्जों में कही गई बात कभी कभी पूरी उम्र की दास्तान बन जाती है।

यादों की बारात फिल्म का गाना आपने सुना आशा भोसले और रफ़ी की आवाज़ में। मजरूह सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया आर डी बर्मन ने। कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में इतनी खामोशी से आते हैं कि हमें एहसास भी नहीं होता कि हम कब अपना दिल हार बैठे। फिर उनकी हंसी में अपना सुकून मिलने लगता है, उनकी आवाज़ दिन भर की थकान मिटा देती है और उनकी यादें हर खामोश पल को भर देती हैं। मोहब्बत शायद दिल चुराने का नाम नहीं, बल्कि किसी के दिल में इतनी गहराई से बस जाने का एहसास है कि उसके बिना हर खुशी अधूरी लगे।

डॉन फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। अनजान ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी ने।

जवानी जाने मन 1982 की फिल्म नमक हलाल का एक बेहद लोकप्रिय और मस्ती भरा गाना है। इसे आशा भोसले ने गाया, संगीत बप्पी लाहिरी का था और इस फिल्म में परवीन बाबी की स्टाइल और स्क्रीन प्रेजेंस ने इसे और यादगार बना दिया था। इस गाने में 80 के दशक की डिस्को धुन, चुलबुलापन और चमकती हुई फिल्मी दुनिया का पूरा रंग दिखाई देता है। जवानी जाने मन सुनते ही वही पुराना दौर, जगमगाते सेट और बेफिक्र मस्ती याद आ जाती है।

अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 3 बजे सुनिए समाचार। समाचारों के बाद अर्चना सचदेवा होंगी आपके साथ लेकर प्रोग्राम हमराही। इसी के साथ राखी को इजाजत।

0: नरेंद्र मोदी अपने पांच देशों की यात्रा के दूसरे चरण के लिए नीदरलैंड्स पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर उनका स्वागत नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री टॉम बेरेनसेन ने किया। 15 से 17 मई तक चलने वाली इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और राजा तथा महारानी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। सेमीकंडक्टर चिप्स और एआई के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। व्यापार के दृष्टिकोण से नीदरलैंड्स भारत का प्रमुख आर्थिक साझेदार है और यूरोप में तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य भी है। प्रधानमंत्री ने हुरमूज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया है। अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने यूएई के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है। हॉर्मोन को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना यह हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। प्रधानमंत्री मोदी की अबूधाबी यात्रा के दौरान भारत और यूएई ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, निवेश और व्यापार में सहयोग बढ़ाने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार करने में आसानी और जीवन जीने को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर उपकर कर या अधिभार लगाने से संबंधित एक समाचार संस्थान की रिपोर्ट को खारिज कर दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन पदभार ग्रहण करने के बाद आज सिक्किम की अपनी पहली यात्रा पर जाएंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति गंगटोक में सिक्किम राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग गोले और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी गंगटोक के मानन केंद्र में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने महिला सशक्तिकरण समिति का गठन किया है। लोकसभा से भाजपा सांसद डॉ डी पुरंदेश्वरी समिति की अध्यक्ष होंगी। समिति में लोकसभा से 18 और राज्यसभा से 10 सदस्य शामिल हैं। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा कराने की घोषणा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से केवल एनटीए के आधिकारिक चैनलों पर ही भरोसा करने का अनुरोध किया है। परीक्षाएं दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएंगी। अमेरिका के विदेश विभाग ने बताया है कि वाशिंगटन में हुई वार्ता के एक और दौर के बाद इसराइल और लेबनान 45 दिनों के लिए युद्ध विराम बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। विदेश विभाग के प्रवक्ता टॉमी पिगोट ने कहा कि 2 दिनों की सफल वार्ता के बाद यह समझौता हुआ है और जून में आगे की बातचीत होगी। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। 188 रन के लक्ष्य को लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही हासिल कर लिया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। मैच शाम 7:30 से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ के अलग अलग हिस्सों में लू चलने की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही कोंकण और गोवा में मौसम की अत्यधिक गर्म और उमस भरे रहने का पूर्वानुमान जारी किया गया है। विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान लगाया है। वहीं कल केरल, माही, दक्षिणांतरी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी इसी तरह की स्थिति बने रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। Prime Minister Narendra Modi has arrived in the Netherlands

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र

रात के 3:11 हुए हैं। हम राही कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करते हुए आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना सचदेवा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, प्यार एक खूबसूरत सा एहसास है जो शब्दों से परे है, और जब किसी से प्यार हो जाता है तो स्थिति कुछ ऐसी सी हो जाती है।

गीता दत्त और मन्ना डे की आवाज में फिल्म जिद्दी से अभी आपने गीत सुना। आंखों से दूर है पर दिल के पास है, आंखों से दूर है पर दिल के पास है, जिंदगी के सफर में तू ही एक खास है, तुमसे कब मुलाकात होगी बस यही एक आस है।

सुमन कल्याणपुर और मुकेश की आवाज में फिल्म जौहर महमूद इन गोहा से अभी आपने गीत सुना। हमारे दास्ताने इश्क का बस इतना ही फसाना है, हमारे दास्ताने इश्क का बस इतना ही फसाना है, एक मीठा सा दर्द है और एक बेनाम जमाना है।

लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में फिल्म तीसरा कौन से अभी आपने गीत सुना। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। हमराही कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना। आइए अब अगला गीत सुनते हैं फिल्म प्रेम रोग से लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की आवाज में।

दिल दिया है तो निभाना भी जरूरी है, दिल दिया है तो निभाना भी जरूरी है, यूं ही किसी को अपना बनाना भी जरूरी है। वफा की राह में हर मोड़ पर मुस्कुरा कर साथ चलना भी जरूरी है। आइए सुनते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म जमी आसमां से ये गीत।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म यादों की बारात से अभी आपने गीत सुना। तुम्हारे साथ ने ही तो जिंदगी को सजाया है, तुम्हारे साथ ने ही तो जिंदगी को सजाया है, मैंने तुमको अपना और तुमने मुझे अपना बनाया है। ना जाने कितना प्यार है तुमसे कि अब तो हर धड़कन में बस तुम्हारा ही साया है।

0: तुझे क्या मालूम।
1: आयशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाज में फिल्म वीर भीमसेन से अभी आपने गीत सुना, तुम्हारा इश्क ही काफी है, तुम्हारा इश्क ही काफी है, तमाम उम्र यही आसरा ही काफी है, जहां कहीं भी मिलो मिल के मुस्कुरा देना, खुशी के वास्ते ये सिलसिला ही काफी है। आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म सच्चा झूठा से ये गीत।
2: यूं ही तुम मुझसे बात

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर।

लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में फिल्म फर्ज से ये गीत आप सुन रहे हैं। इसी के साथ ही हमराही कार्यक्रम से अब अपनी दोस्त अर्चना को अनुमति दीजिए और आगे भी इसी तरह हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। और कुछ ही पलों में सुनिएगा समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण के लिए नीदरलैंड्स पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर उनका स्वागत नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री टॉम बेरेनसन ने किया। 15 से 17 मई तक चलने वाली इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और राजा तथा महारानी से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। सेमीकंडक्टर चिप्स और एआई के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। व्यापार के दृष्टिकोण से नीदरलैंड्स भारत का प्रमुख आर्थिक साझेदार है और यूरोप में तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य भी है। प्रधानमंत्री ने होर्मुज जल डमरू मध्य से

0: सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया है। अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने यूएई के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है और उसको फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखा, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। प्रधानमंत्री मोदी की अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और यूएई ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, निवेश और व्यापार में सहयोग बढ़ाने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार करने में आसानी और जीवन जीने को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर उपकर कर या अधिभार लगाने से संबंधित एक समाचार संस्थान की रिपोर्ट को खारिज कर दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन पदभार ग्रहण करने के बाद आज सिक्किम की अपनी पहली यात्रा पर जाएंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति गंगटोक में सिक्किम राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग गोले और केंद्रीय उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी गंगटोक के मानन केंद्र में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने महिला सशक्तिकरण समिति का गठन किया है। लोकसभा से भाजपा सांसद डॉ. डी पुरंदेश्वरी समिति की अध्यक्ष होंगी। समिति में लोकसभा से 18 और राज्यसभा से 10 सदस्य शामिल हैं। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा की घोषणा कर दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से केवल एनटीए के आधिकारिक चैनलों पर ही भरोसा करने का अनुरोध किया है। परीक्षाएं दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएंगी। सरकार ने पेट्रोल की निर्यात पर 3 रुपये प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया है। वित्त मंत्रालय ने आज इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क 23 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 16.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। विमानन टरबाइन ईंधन पर भी विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क 33 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। संशोधित दरें आज से शुरू होने वाले अगले पखवाड़े तक लागू रहेंगी। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। 188 रन के लक्ष्य को लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही हासिल कर लिया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से होगा। मैच शाम 7:30 से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। आइए सुनते हैं कार्यक्रम अरुणिमा।

सुबह के 4:11 और 14 सेकंड हुए हैं। अरुणिमा कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं मैं, आपकी दोस्त अर्चना सचदेवा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सुबह की इस बेला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हर दिन एक नया सवेरा होता है और जिंदगी में परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, फिर भी हमेशा खुश रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

के जे येसुदास की आवाज़ में अपने पराये फिल्म से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, प्यार अगर सच्चा है तो उसमें किसी को भी झुकने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उस प्यार में समर्पण है, और जहां समर्पण की भावना हो वहीं पर प्रेम है।

आशा भोसले, किशोर कुमार और साथियों की आवाज में फिल्म उमंग से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, रिश्तों में अगर मतलब आ जाता है तो वो रिश्ते हैं ही नहीं, वो रिश्ते बस सिर्फ नाम के ही हैं।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अरुणिमा में आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना। आइए अब अगला गीत सुनते हैं, चितचोर फिल्म से केजे येसुदास की आवाज में।

दोस्तों, प्रकृति की तो बात ही अलग है। पानी, धरती, नदियाँ, हवा, पहाड़, आसमां, सभी ही बहुत अच्छे लगते हैं। और जितना आप प्रकृति के साथ जुड़ के रहेंगे, उतना ही आपका स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहेगा।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

किशोर कुमार की आवाज में फिल्म दूर के राही से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, जिंदगी में प्यार ही है जिससे हम किसी के दिल में उतर जाते हैं, और प्यार से ही हम किसी दुखी मायूस व्यक्ति को खुश कर सकते हैं।

लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाज में फिल्म क्रांति से ये गीत आपने सुना। दोस्तों, अब चलने का वक्त भी आ गया है और हम चाहते हैं कि आप जहां

भी हों, हमेशा खुश रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें। और इसी के साथ ही अरुणिमा से अब अपनी दोस्त अर्चना को अनुमति दीजिए और आगे भी इसी तरह हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। और कुछ ही पलों में सुनिएगा समाचार, परंतु उससे पहले हमारी अंतिम पेशकश आपके लिए लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म उपकार से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर उनका स्वागत नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री टॉम बेरेनसेन ने किया। 15 से 17 मई तक चलने वाली इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और राजा विलियम अलेक्जेंडर तथा महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। इस दौरान सेमीकंडक्टर चिप्स और एआई के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। व्यापार के दृष्टिकोण से नीदरलैंड्स भारत का एक प्रमुख आर्थिक साझेदार है और यूरोप में तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है। प्रधानमंत्री ने होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा तथा खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबूधाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने अमीरात के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष

0: के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में यूएन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: प्रधानमंत्री ने अमीरात पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। उन्होंने उनकी अबुधाबी की यात्रा के दौरान भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, निवेश और व्यापार में सहयोग बढ़ाने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार करने में आसानी और जीवन जीने को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर उपकर, कर या अधिभार लगाने से संबंधित एक रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। सरकार ने पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपए प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया है। वित्त मंत्रालय ने इसकी अधिसूचना जारी की है। डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क 23 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 16.50 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। विमानन टर्बाइन ईंधन पर भी विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क 33 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। संशोधित दरें अगले पखवाड़े तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा कराने की घोषणा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से केवल एनटीए के आधिकारिक माध्यमों पर ही भरोसा करने का अनुरोध किया है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन पदभार ग्रहण करने के बाद आज सिक्किम की अपनी पहली यात्रा पर जाएंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति गंगटोक में सिक्किम राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांगोले और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी गंगटोक के मानन केंद्र में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। अमेरिका के विदेश विभाग ने बताया कि वाशिंगटन में हुई वार्ता के बाद इसराइल और लेबनान 45 दिनों के लिए युद्ध विराम बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। विदेश विभाग के प्रवक्ता टॉमी पिकोट ने कहा कि 2 दिनों की सफल वार्ता के बाद ये समझौता हुआ है और जून में आगे की बातचीत होगी। इसराइल और लेबनान के हिजबुल्ला आतंकवादी समूह के बीच अस्थिर युद्ध विराम रविवार को समाप्त होने वाला था। और आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया है। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। मैच शाम 7:30 से कोलकाता में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. Prime Minister Narendra Modi arrived in the Netherlands late last night on the second leg of his five-nation tour aimed at deepening India's strategic and economic ties with European nations. Mr. Modi was received by the Dutch Foreign Minister Tom Berendsen upon his arrival at Amsterdam Airport. Mr. Modi reached the Netherlands after a brief stopover in the United Arab Emirates, where he held talks with UAE President Mohammed bin Zayed Al Nahyan in Abu Dhabi. At the hotel in The Hague, the Prime Minister was accorded a grand welcome with cultural and musical performances by the Indian diaspora. Dutch troops also greeted him ceremonially. During the visit, Prime Minister Modi will hold bilateral talks with Dutch Prime Minister Rob Chetten and will call on their majesties, the King and the Queen. The visit carries significance beyond bilateral ties and is expected to shape broader India-EU relations following the recently concluded India-Europe Free Trade Agreement. Prime Minister Narendra Modi has said that government remains committed to improving ease of doing business and ease of living for the countrymen. In a social media post, Mr. Modi rejected a report of a media house on cess or tax or surcharge

सुबह के 5:11 और 13 सेकंड हुए हैं। भोर सुहानी कार्यक्रम में आप सभी का दिल से स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना सचदेवा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, सुबह का समय भक्ति और शांति के लिए सबसे अच्छा समय

दोस्तों, सुबह के इस शांत वातावरण में भजन सुन के आपको जरूर आनंद आया होगा। और आइए अब अगला गीत सुनते हैं, लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म बेकसूर से।

दोस्तों, जिंदगी का ये सफर हंसते हंसते कट जाए तो क्या बात है। और अगर कोई भी परेशानी हो परंतु फिर भी आप खुश रहते हैं तो वो परेशानी भी झट से दूर हो जाएगी।

नितिन मुकेश और साधना सरगम और साथियों की आवाज में अभी आपने गीत सुना फिल्म खून भरी मांग से। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। भोर सुहानी में आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना। आइए अगला गीत सुनते हैं मुकेश की आवाज में फिल्म अनोखी रात से।

दोस्तों, इस दुनिया में जीना है तो अपने आप को मजबूत बनाना होगा और मस्त भी रहना होगा, तभी आप आनंद पूर्वक जीवन जी सकते हैं। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म गुमनाम से ये गीत।